फिर हमने हवा को उनके जेरे फरमान कर दिया कि जहां वो पहुंचना चाहते उनके हुक्म से नर्म नर्म चलने लगती, और जिन्नों को भी उनके जेरे फरमान किया। ये सब इमारतें बनाने वाले और गोता मारने वाले थे, और कुछ दूसरों को भी जो जंजीरों में जकड़े हुए थे। हमने कहा, ये हमारी बख्शिश है, चाहो तो एहसान करो या रख छोड़ो, तुमसे कुछ हिसाब नहीं है, और बेशक उनके लिए हमारे यहां कुर्ब और उम्दा ठिकाना है।

और उनके पास नीची निगाह रखने वाली और हम उम्र हूरे होंगी। ये वो चीजें हैं जिनका हिसाब के दिन के लिए तुमसे वादा किया जाता था। ये हमारा रिस्क है जो कभी खत्म नहीं होगा। ये नेमतें तो फरमाबरदारों के लिए हैं और सरकशों के लिए बुरा ठिकाना है, यानी दोजख, जिसमें वो दाखिल होंगे और वो बुरी आरामगाह है। ये खोलता हुआ गर्म पानी और पीप है, अब इसके मजे चखें। और इसी तरह के और बहुत से अजाब हैं।

Unka mein

星，火星。

पहले शेर नु कहि दा मतला को बंद करना को बंद करना पहले शेर नु कहि दा मतला की कहि दा एंड वाले शेर नु कहि दा मक्ता की कहि दा उच्ची सर बोलो की कहि दा शायर ने लिखया ए गल ते गौर करके ते शेर सुनो शायर ने लिखया हुक्म कर

0: ताई पतो नज़दगुल होटल हालाणी राबते जे लाइ 0301
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

0: जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: तवा के तवा जे क्लास ताई वठी वना ये आए तवा जी क्लास
3: कदे ये थिंदो आहे त बारन जे सिखण समझण जी सलायत महदूद लगंदी आहे
4: अस्सलाम वालेकुम बारो
3: मसलो तालीम न पर खुराक में जरूरी غذا जी घटताई हुंदी आहे
4: तवां जो छा नालो आहे
2: मैडम तवां स्कूल ऐं ॿारनि जो हाल ॾिसी परेशान थी वियो पढ़ाई में बिल्कुलु हुननि जी दिलि न आहे लॻंदी बार बार फेल थींदा आहिनि
4: तव्हां पंहिंजो लंच बॉक्स ॾेखारियो हिते कंहिंखे हिननि जो ख़्याल ई न आहे आयो ॿारो अॼु खां असां हिकु नओं सिलसिलो शुरू कंदासीं असां सिखंदासीं त सिहतमंद खाधो कहिड़ो हूंदो आहे छा ठाहियो अथई अहमद
5: सुबुह की पहली किरण
3: मुतवाज़िन ग़िज़ा महांगी नाहे हूंदी बहितरीन ग़िज़ा ॿारनि जो बहितरीन मुस्तक़बिल ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश
6: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे के ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं तो भाई साहब क्या समझे
7: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
7: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
8: सामीन व नाज़रीन मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा औलाद के निगहबान वालिदैन हैं पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप जरूर पिलाइएगा
9: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
10: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई
9: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
10: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 024246

0: 01800.
1: मां खाधो गरम करे थी वठा।
2: पुद थकल थकल पी लगे घणी खरेता
1: तवा जो पुट सुमई न थो पूरी रात मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा
3: मेरी थकन को भी तेरे
2: तू हल वे मां छा तू

0: हे वट एड़ी शयूं खान ठीक रहंदी
1: तव्हां खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खानी तो मां के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन गिज़ा माउ ऐं ॿार ॿिन्ही जो हक़ आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे
6: अस्सलाम वालेकुम अदा
7: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
7: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
8: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
9: 03013992836
8: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319 1557724
10: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए
11: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से।

0: ॾिनी वेंदी। डॉक्टर सुमेरा बिरोही औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर।
1: बजे खां मंझंदि जो टी

ऐं उते एल आर के लिखी स्पेस ॾींदव पंहिंजो नालो, पंहिंजे शहर जो नालो ऐं सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां 888-1 ते असांजे सेंड करे सघो था। ऐं तव्हां असांजे फेसबुक जे पेज ते बि तव्हां असांजे पंहिंजो नालो, पंहिंजे सवाल जो जवाबु लिखी मोकिले सघो था। ऐं तव्हां असांजे मोकिले सघो था। असांजे स्टूडियो में मोबाइल आन थींदी फिक्स 10 बजे। तव्हां 10 बजे कॉल करे पंहिंजो नालो, पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु लिखी करे तव्हां असांजे कॉल करे नोट करे सघो था। असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। असांजो नंबर आहे। जी हा समिन, जेके दोस्त प्रोग्राम रोशन सुबुह में पंहिंजो हिन वक़्तु आन थिया आहिनि ऐं जेके प्रोग्राम कोन पिया ॿुधनि या जेके नवां दोस्त आहिनि, असां उनखे हिकु दफ़ो नंबर वरी ॿुधाईंदासीं। त असांजो नंबर आहे 0332-1322-88। समय वरी हिकिड़ो ख़ूबसूरत नगमो अवां दोस्तनि जे नाम।

0: जी असमें प्रोग्राम रोशन सुबह में तवां जो असांजो साथ रहंदो ठीक गुजारे वक़्त दिन 10 थियनि पिया हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक ऐं कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वरी वापसि ईंदासीं कॾहिं हिन मुंहिंजो असांजो सुवालु इहो ई आहे त सिज ऐं चंड में जे विच में मुफ़ासिलो केतिरो आहे
1: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
3: Pakistan Ki Shaan. Wadi-e-Mehran. Mehran Ki Pehchan. GFM 88 Network. Sindh Ki Awaaz. Har Din Har Peher. Zindagi Ki Leher. GFM 88 Network. Sindh Ki Awaaz.
4: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरा पर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरा पर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

नालो लिखाए सको था तां फेसबुक जी आईडी ते भी पांजो नालो ए सवाल जो सही जवाब लिखी मोकले सको था असन नंबर आ 0332132288 ऐं साईं मुंहिंजा चंड जे बारे में कुझु मालूमात अव्हां ताईं पहुचाईंदासीं ऐं असांजे सवाल जो सही जवाब बि इन मालूमात में आहे ऐं जेको अव्हां इन मालूमात जो थोरो फ़ाइदो वठंदा त साईं मुंहिंजा राति जे वक़्तु असांजे अङण ते जॾहिं असां सुम्हंदा आहियूं ऐं आसमान ते सितारनि जी सूंह में चंड खे बि ॾिसंदा आहियूं ऐं यकीननि उन वक़्तु असां चंड बाबति कुझु सोचींदा ज़रूरु आहियूं त चंड असुल में आहे छा साइंसदान चवनि था त चंड जो ॾींहुं राति ज़मीन जे ॾींहुं राति खां 14 दफ़ा वॾो आहे ऐं चंड ते ज़मीन जो पाशो मुकमिल चंड ग्रहण वक़्तु पवंदो आहे ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी चकर ॾियणु वक़्तु 2000 मेल फी कलाक जे रफ़्तार सां हले थो ऐं चंड ज़मीन जे चौधारी 27 ॾींहं 7 कलाक ऐं 43 मिंटनि में हिकु फेरो ॾिए थो ऐं साल में 13 भेरा चकर ॾींदो आहे चंड ऐं सिज जे विच में 9,27,72,000 मुफ़ासिलो आहे ऐं चंड ज़मीन खां 2,29,857 मेल परे आहे ऐं चंड जो कतर बि 2,160 मेल आहे ऐं चंड जी रोशनी 1.33 सेकंडनि में धरतीअ ते पहुचे थी त समय इहा मालूमात चंड जे हवाले सां हुई ऐं असां वहां ताईं पहुचाईसीं ऐं इन मालूमात में ई असांजे सवाल जो सही जवाबु हुयो ऐं जेकॾहिं तव्हां अञा बि जवाबु ॿुधण बाद बि तव्हां मूंखे न ॿुधाए सघो त पोइ उनजो मां नालो ज़रूरु न हलाईंदुसि ऐं मां तव्हांखे सवाल जो सही जवाबु हिन मालूमात में ॾेई चुको आहियां ऐं चंड जे बारे में ॿुधूं था शमन अली मीरालीअ खे त हू छा पियो चवे

जी हा साईं, मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह में असां जेको सवाल नओं सीं त चंड ऐं सिज जे विच में केतिरो मुफ़ासिलो आहे। मां तव्हांखे चंड जी मालूमात में तव्हांखे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए चुको आहियां, पर पोइ बि काफ़ी दोस्त कोन था ॿुधाए सघनि, त असां अवां जा नाला ज़रूरु लिखूं पिया। असांजी मोबाइल आन आहे स्टूडियो में ऐं उनजो नंबर आहे 0332123288। साईं मुंहिंजा, जॾहिं को प्यारो माण्हू रुसी वञे त पोइ छा कजे? जेकॾहिं साईं मुंहिंजा प्यारो माण्हू रुसी वेंदो आहे त बेचैनी ऐं बेक़रारी थी पवंदी आहे, ऐं उन बेक़रारी खे ॾिसंदे ऐं जेके पंहिंजा साथी हूंदा आहिनि, पाड़े वारा हूंदा आहिनि, त उनखे मोहबत में चाहत में चरियो बि छॾींदा आहिनि। छो त चाहत जे दरिया में अणतारू बि पंहिंजे पीढ़ीअ जे जी चीच पकिड़े घिरी पवंदो आहे, ऐं उहो नाहे ॾिसंदो, नाहे ॼाणींदो त दरिया जूं छोलियूं केतिरियूं तेज़ आहिनि ऐं असांखे नुक़सानु ॾींदियूं। पर हुन जे लफ़्ज़ ज़बान त हूंदो आहे पीढ़ीअ जी सिक, उकीर, चाहत। त साईं जा पंहिंजे पीढ़ी प्यारे जे ऐं महबूब खे यादि कंदे ऐं हुन जो जेको पंहिंजो बचपन आहे या हुन जेको पंहिंजी मोहबत जो आहे उहो यादगीरो ईंदो आहे, त पंहिंजो प्यारी पहिरियों प्यारो गॾु हुजे ऐं हुनखे माण्हू मयार बि ॾेई सघे थो, पर पीढ़ीअ जो रुसणु जेको आहे उहो असांखे ॾाढो नुक़सानु ॾींदो आहे।

जी असमें प्रोग्राम रोशन सुबुह में तव्हांजो असांजो साथ रहंदो बाक़ी अधु कलाकु आहे ऐं अधु कलाक में तव्हांखे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए चुका आहियूं पर जंहिंखे यादि रहंदो उनखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं ऐं बाक़ी तव्हांजा नाला खणंदासीं ऐं ख़ूबसूरत नगमा अव्हांजे नाओ कंदासीं हिन तरह पिया कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़।

0: It's 10:30.
1: മെഹ്റാൻ ഐറൺ സ്റ്റോർ ഹാലാണ്. ഹോൾസെയിൽ ഡിപ്പോ, എ നെയിം ടു ബി ട്രസ്റ്റഡ്.
2: സരിയാ ഗാർഡർ ടി എ എങ്കൽ ചേനൽപട്ടി ലോഹി ദർവാസ സിൽവർജാ ചോങ് സിമെന്റ് റേത്തി ക്രേഷ് രംഗ് വഗേര ബാസാർ കാ ബാരിയ ദസ്തയാബ് ആയി.
1: ഹാണ യച്ചു മെഹ്റാൻ ഐറൺ സ്റ്റോർ നസ്ത് ബലോച്ച് പെട്രോൾ പമ്പ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഹാലാണി.
2: റാബ്തെ ലായ പ്രൊപ്രൈറ്റർ ഗുലാം നബി മുഗൾ 03003204372 02424601100.
3: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ. मैं वालदान से दरख्वास्त करूँगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों. ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके.
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन पोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर.

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
0: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

जी समाज साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह हिन वक़्तु पहुची पए पंहिंजी पुॼाणी ते। पंहिंजी मेज़बान नेमतुल्लाह जूणे जो ॾींदा इजाज़त हयाती रही, तव्हां सां ज़रूरु मुलाक़ात कंदासीं। तेसीं ताईं ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।

0: It's 11 a.m. This line check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: विचो बल श्रोतियाल अहम बोर्ड ते आहे चिकताण जी बीहर शुरुआत कंहिंजी
3: आहे।
2: चीनी सदर शी जिनपिंग जी रूसी सदर सां मुलाकात दौरान ॻाल्हि ॿोल। चीनी मीडिया मौजब ॿिनि ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते चीन पहुतल रूसी सदर व्लादिमीर प्यूटिन चीनी सदर सां सरप्राइज इजलास में शिरकत कई। रूसी सदर चयो त मॉस्को ऐं बीजिंग विच में लाॻापा गैर मामूली हद ताईं वधी चुका आहिनि। अमरीकी सेनेट ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। परॾेही मीडिया मूजिबि ठहराउ 47 वोटनि जे मुक़ाबले में 50 वोटनि सां मंज़ूर थियो। जंग सबबि अमरीका समेत सॼी दुनिया जी मैशियत खे वरुण झटको लॻो आहे। परॾेही मीडिया मूजिबि सेनेट बाद ठहराउ अमरीकी ऐवान में पेश कयो वेंदो। हलंदड़ हफ़्ते ई वोटिंग जो इम्कान आहे। उहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौजी हटाइण जो ठहराउ अमरीकी ऐवान बि मंज़ूर कयो वेंदो।

जंग में वापसी जी सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा। जंग में कुछ सीखो है उन मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल दींदी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास रखी जो रद्द अमल। ईरानी नायब परदेही वजीर काजम गरीब अब्बास चवणा है अमरीका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है। असा कें भी जहरत के मुकाबलो करने तैयार आयो।

अमरीकी नायब सदर एक तरफ ईरान से गाल में अकबरा की दावा तो बे तरफ ईरान हमलन की धमकी अमरीकी नायब सदर जेडेवेंस है ईरान से गाल में अहम अकबराई थी है ईरान महदो करना चाहे तो ईरान के एटमी हथियार रखने वाली शर्त से हथ खो पव ये न थो तो ईरान खिलाफ़ जंग बीहर शुरू कदासी।

दरिया खान मरी वेझो नौजवान कतल घोट आदम लाशारी वासी 38 साल सोहेल लाशारी के अणॼातल जवाबदारन कतल कर छो लाश खबर के वणन वटा हथ बुधा पे वे तो रात देर से नौजवान के फोन से घुराए कतल कर वो है। इन्हन के रूहानी पेशवा साईं सादराम जो मड़ अज सिंगापुर का कराची एयरपोर्ट पहुंचन वारस बया सोगवार वे अंग में कराची एयरपोर्ट पहुंतल तर्जमान रेड़की दरबार जो चवण है मड़ कराची एयरपोर्ट पहुंचने बाद एयर एम्बुलेंस जरिए सखर एयरपोर्ट आंदो वो आखिरी रस्मू सुबह सुबह 10 वगे रेड़की दरबार में अदा क्यों व्यू।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ GAFM 94।

0: मेरा नाम डॉक्टर आफताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे, होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे, होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ Biocon International Pakistan.
2: This program is brought to you by
3: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश

0: ॿारनि में कद जो न वधणु, मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधणु, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-8951।
1: छो परेशान आहीं?
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
1: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर क़िस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
1: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
4: 0301-399-2836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर वक्त।
1: जदे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफ एम नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: जीए एफ एम 88 नेटवर्क
0: इट्स
4: बोलना है चीनी सदर शी जिनपिंग के रूसी सदर से मुलाकात दौरान गाल बोल चीनी मीडिया मौजूद सरकारी दौरे से चीन पहुंचल रूसी सदर चीनी सदर से सरप्राइज इजलास में शिरकत कई रूसी सदर चो तो मॉस्को ए बीजिंग विच में लागापा गैर मामूली हद तक वधी चुका आहन 25 वरन में रूस और चीन विच में व्यापार स्थिरता में 25 सैकड़ो वाध थी आहे
5: अमेरिकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी ए फौज हटाने जो ठहराव मंजूर करे वरतो पर डे मीडिया मुजब ठहराव 47 वोट से मुकाबले में 50 वोट से मंजूर थियो जंग सबब अमेरिका समेत सजी दुनिया की मईशत के वो झटको लगो है वही मीडिया मुजब सेनेट बाद ठहराव अमेरिकी अवान में पेश किया वो हलंदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है यो भी इम्कान जाहिर कर पे तो ईरान की नाकाबंदी फौज हटाने जो ठहराव अमेरिकी अवान में भी मंजूर किया वो
4: जंग में वापसी की सूरत में अमरीका के घना सरप्राइज मिलंदा जंग में जो सीखो है उनकी मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल लींदी ईरानी परदेही वजीर अब्बास राख्ती जो रद्द अमल ईरानी नायब परदेही वजीर काजम गरीबाबादी चवण है अमरीका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है अस कें भी जारत जो मुकाबलो कर तैयार आयो
5: अमेरिकी नायब सदर की एक तरफ ईरान से गाल में अग भराई की दावा तो बे तरफ ईरान से हमलन की धमकी अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस है ईरान से गाल में अहम अग भराई थी है ईरान वायदो कर चाहे तो ईरान के अटे में हथियार रखने वाली शर्त तहत खड़नो पवो ये न थो तो ईरान खिलाफ जंग बीहर शुरू कंदी
4: दरिया खान वेझो नौजवान कतल घोट आदम लाशारी वासी 38 साल सोयल लाशारी के अणॼातल जवाबदार कतल कर छो लाश खपड़न के वणन वटा हथ बुधाए पे तो रात देर से नौजवान के फोन ते घुराए कतल कह वो है
5: हिंदुन के रूहानी पेशवा साईं साधराम जो बहड़ो अज सिंगापुर का कराची एयरपोर्ट पहुंचो वारिस बया सोगवार वरी अंग में कराची एयरपोर्ट पहुंचल तजवान रेड़की दरबार जो चवण है तो मण कराची एयरपोर्ट पहुंचने बाद एयर एम्बुलेंस जरिए सखर एयरपोर्ट आंदो वो आखिरी रस्मू सुभाने सुबह 10 बजे रेड़की दरबार में अदा कई वेंद
4: बांग्लादेश के टीम बी टेस्ट मैच में भी शिकस्त दे छी बांग्लादेश बी टेस्ट मैच में पाकिस्तान के 78 रन से शिकस्त दिनी बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान टीम के मैच कटन लाए 467 रन जो टारगेट दिनों हो पाकिस्तानी टीम 358 रन उठाए आउट थी वही पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 94 शान मसूद और सलमान अली आगा 71 रन उठाय बांग्लादेश के तजल इस्लाम 6 विकेट वी टीम के कामयाबी दियारी
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
6: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं
7: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राब्ते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
8: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
9: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताई आई हर आचर ते सुबह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राबते जे लाइ 03385569

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम बहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Diya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

विच ओभर जी सूरत हाल अहम मोड़ ते आहे छिका तव्हांजी ॿीहर शुरूआत कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग जी रूसी सदर सां मुलाक़ात दौरान ॻाल्हि ॿोल। चीनी सदर शी जिनपिंग चयो त जंग जे ख़ात्मे सां आलमी तवानाई सप्लाई जे इस्तेहकाम ऐं आलमी वापार में रुकावटूं घटाइण में मदद मिलंदी। ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते चीन पहुतल रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन चयो त रूस ऐं चीन जे लाॻापनि में गैर मामूली वाध आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित थींदी। ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटेजिक सहकार जी गॾियल पधराई ते सहियूं कयूं वयूं।

0: ईरान खे हाणे वॾो लोडो ईंदो, वक़्तु बि घटि अथसि, कुझु ॾींहनि में हमिलो करे सघूं था। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त सूमर वारे ॾियारे ते जंग शुरू करण में सिर्फ़ कलाक बचियो हो, ईरान जंग तेज़ीअ सां ख़तमु करे छॾींदासीं।
1: जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सीखो है उनकी मदद से वधिक हैरत अंगेज रद्द अमल लींदासीं। ईरानी परदे वजीर अब्बास अराग़ची जो रद्द अमल। ईरानी नायब परदे वजीर काज़िम गरीब आबादी जो चवण है अमेरिका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है, अस कें भी जारियत जो मुकाबलो करण के लिए तैयार आयो।
0: अमरीकी नायब सदर एक तरफ ईरान से गाल में अकबराए की दावत, बे तरफ ईरान से हमलों की धमकी। अमरीकी नायब सदर जेड विंस ईरान से गाल में अहम अकबराई थी है, ईरान मुआहदो करण चाहे तो ईरान के हेठ में हथियार रखने वालों शर्त हथ खो पव। ये न थो तो ईरान खिलाफ जंग बीहर शुरू कंदासीं।

अमेरिकी सेनेट ईरान की नाकाबंदी फौज हटाने जो ठहराव मंजूर करे वरतो। परदेही मीडिया मुजिब ठहराव 47 वोट से मुकाबले में 50 वोट से मंजूर थियो। जंगे सबब अमेरिका समेत सजी दुनिया की मईशत के वो झटको लगो है। परदेही मीडिया मुजिब सेनेट बाद ठहराव अमेरिकी अवान में पेश किया वो हलदड़ हफ्ते ही वोटिंग जो इम्कान है। यो भी इम्कान जाहिर किया पे वे तो ईरान की नाकाबंदी फौज हटाने जो ठहराव अमेरिकी अवान में भी मंजूर किया वो।

वफाकी हुकूमत ईद उल अज़हा लाइ टिन ॾींहनि जी मोकल जो ऐलान करे छॾियो। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरीअ सां काबिना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। 26, 27 ऐं 28 मई ते मोकल हूंदी।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ई न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुना ही होगा. तो बिल्कुल आपके सिद्रा आप लोगों के साथ साथ और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है सर आपने हाल चाल बताते जाइए. सो डियर लिसनर्स अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत है. उम्मीद है शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे. तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है. फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली हैं. आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं. तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है प्रोग्राम में ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक. बिल्कुल जी पूरे 2 घंटे हम आप लोगों के साथ मौजूद रहने वाले हैं बहुत सारी बातों के साथ और बहुत ज्यादा वाले अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ साथ. तो यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताए जाएंगे और व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनका इस्तेमाल आप क्यों और कैसे करने वाले हैं ये भी बताएंगे. और साथ ही साथ आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताया जाएगा. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इन दोनों प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप लोगों ने करना है अपनी खूबसूरती को और ज्यादा जो है ना वो निखारते जाना है. और यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं. बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे. ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की बहनियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून. साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला विकास आली रे आली सिद्रा अली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की समय लाने के लिए. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की समय लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं. आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जनाब आज के प्रोग्राम एक बहुत प्यारी सी कसीदे के साथ. कसीदा सुनते हैं जी प्रोग्राम के स्टार्टिंग में उसके बाद हम जैसे ही वापस आते हैं बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है. सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपका हमारे साथ पूरे 3 बजे तक का. सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए.

क्या बात है जी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो. आप लोगों तक पहुंचा जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो यहां पर आप लोगों को बताया जाता है जनाब कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद है. ऑप्शंस में आप लोगों के लिए जनाब बहुत ही मजे के प्रोडक्ट्स मौजूद है. जैसे कि अगर आप व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी आपके लिए व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है. और उसके साथ साथ अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगाते हैं, आपको कोई फेयरनेस क्रीम चाहिए जो आप दिन में लगा सके, तो उसके लिए आपके लिए व्हाइट एश की लवली क्रीम मौजूद है. और साथ साथ आपके लिए डॉक्टर पिंपल नाम से ट्यूब भी है जो कि एक्नी क्लियर ट्यूब है. और ये आयुर्वेदिक फार्मूला है, अगर आपके चेहरे पर एक्नी है तो वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके लिए भी जनाब आप लोगों के पास जो है वो व्हाइट एश का साबुन भी मौजूद है. अगर आप सोप लगाते हैं तो साबुन लगाएंगे, सोप लगाएंगे तो सोप लगाएंगे, अगर फेस वॉश लगाते हैं तो व्हाइट एश का विटामिन सी का फेस वॉश है जो कि आप बिल्कुल लगा सकते हैं. उसके लिए आपके पास लोशन है और हेयर रिमूवल लोशन भी है, ठीक है, जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आप लोगों को मिल जाएगा. और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए डी स्किन प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो उसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और उसके साथ डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है. डी स्किन में आप लोगों को दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, बाकी व्हाइट एश में आप लोगों के लिए इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं. तो बिल्कुल आप इस्तेमाल करेंगे, खूबसूरती को बढ़ाते जाएंगे और हमेशा खूबसूरत रहेंगे. और इसी के साथ साथ आज के टॉपिक की जानिब आते हैं. तो मैंने आज आप लोगों से जो सवाल पूछना है वो क्या होगा, तो सवाल आज का कुछ इस तरह से होगा कि आप मुझे ये बताइए कि क्या कभी आप लोग बिना वजह के तैयार हुए हैं. ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं जो कि भाई बिना मतलब के रेडी हो जाते हैं और फिर वो हमेशा तैयार होते हैं कि भाई कोई बोले कि कहीं जाना है तो हम बस बोले तलो. लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह हमेशा तैयार रहते हैं. तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप भी कभी बिना वजह रेडी हुए हैं या फिर आप उन लोगों में शुमार नहीं आते. बिल्कुल जी मुझे बताइए जल्दी जल्दी से, अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं या फिर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रोग्राम की रौनकों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-100. उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. और जी लाड़काना FM 88.8 के पेज के ऊपर आप जब आते हैं तो आपको इजीली हमारी पोस्ट मिल जाती है जो कि लाइव पोस्ट होती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए. ओके जी, पोस्ट को लाइक किया करें और शेयर किया करें क्योंकि शेयरिंग इज कैरिंग होती है और लाइक करने वाले लोग बहुत ही प्यारे होते हैं. चलें जी, और इसी के साथ साथ मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग कभी बिना वजह के रेडी हुए हैं, तैयार होते ही कभी बिना वजह, ये बताइए आज जरा आप मुझे. और उसके अलावा वजह वाले लोग तो बहुत सारे होते हैं ना कि भाई वजह है हमें तैयार होने की, लेकिन बिना वजह अगर आपके पास कोई वजह ना हो लेकिन आप तैयार हो रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है. तो जल्दी से मुझे बताइए. और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो जनाब ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हर जगह हमने अवेलेबल करा दिए हैं, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं तो उसके लिए आपने हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी है. उसके लिए आप नंबर डायल करेंगे जो कि मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी, तो नंबर डायल कीजिएगा, उसके ऊपर नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए और बताइए कि भाईजान हम भी लेना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हमें कहां से मिलेंगे. और फिर वो आपको बता देंगे कि भाईजान आप कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं. उसके अलावा अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो फिर वो अवेलेबल भी करा देंगे. तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595. ये नंबर डायल कीजिए जो कि महर इरफान सियाल साहब का नंबर है जो कि आप लोगों को रिस्पांस देने वाले हैं. और नंबर के ऊपर आप रابطہ करेंगे तो आप लोगों को बताया जाएगा, सही तरीके से गाइड किया जाएगा कि आप कहां से जाकर परचेज करने वाले हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी. तो 03-15-799-0595 ये नंबर आप जरूर से डायल कीजिएगा. और उसके अलावा यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, बिल्कुल आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया है. और ये हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी आदिल हुसैन. वालेकुम अस्सलाम, कहते खुश आयो जी. जी शायरी लिखी था, हमने तुम्हें लफ्जों में कैद करना चाहा मगर मोहब्बत इतनी गहरी थी कि कलम भी खामोश हो गया. मोहब्बत ये नहीं कि हासिल हो जाए, मोहब्बत तो ये है कि दुआओं में भी बस वही रहे. तुम्हें चाहा तो ये हुनर भी सीख लिया, मुस्कुराना दर्द में और जीना तुम्हारी याद के साथ. वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मसरूर अहमद हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम मसरूर, कैसे हैं? छोटे मुस्कान जी, हाँ जी बोले, कैसे हैं? अच्छा
इमरान खान रुख हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। इमरान खान का रुख हमारे प्रोग्राम की जानिब आ चुका है, सो बहुत शुक्रिया जी, वेलकम करते हैं। हिदायतुल्लाह अहमदानी हमें सुन रहे हैं, कहते हैं गाना, अच्छा ठीक है गाना सुनाएंगे। और किशोर भाई कहते हैं कि खूबसूरती की बात हो और स्मार्ट ना हो, ऐसा कभी ना हुआ है और ना कभी होगा। ये तो सही बात है वैसे। और कहते हैं घर के ताने सुनने का सबसे ज्यादा हक लड़कियों का होता है, क्योंकि

0: लिखी है, शायद ये थोड़ी सी समझ नहीं आई, तो बहुत शुक्रिया के साथ आपको वेलकम करते हैं। और साथ साथ आप लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए भाई जान। मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे जो पाले पाले लिसनर्स हैं ना, वो कितना ज्यादा हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते हैं, साथ साथ दोस्तों को जो है ना वो मेंशन करते जाइए। और इसके अलावा एक और बड़ी बात के टॉपिक को फॉलो करते जाइए। और मुझे बताइए कि क्या आप कभी बिना वजह रेडी हुए हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बिना वजह तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार कि बस कोई बोले कहीं जाना है तो वो बोलते हैं चलो हम यहाँ पर जाते हैं जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ही जाने। तो आपने कहीं नहीं जाना, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आते हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर।

0: एलोवेरा फ्रेश
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन।

ब्यूटी प्रोडक्ट जो हैं ये आप लोगों के एरिया में भी मिल रहे हैं, आप लोगों को पता भी है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बात यहाँ पर आकर जो है ना वो थोड़ी सी खुल जाती है कि आप लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए कि जब आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आप क्यों इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात ये होती है कि भाई आप लोग जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो उसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट के ये वाले फायदे हमें मिलने वाले, इन चीजों से ये प्रोडक्ट तैयार शुदा है और ये वाले फायदे हमें मिलेंगे जब हम जो है ना इस्तेमाल करेंगे व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये नाइट क्रीम है, यानी कि रात के टाइम लगाने वाली क्रीम है, और उसके अलावा ये एवोकाडो और एलोवेरा से तैयार शुदा है। तो एवोकाडो भी आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, एलोवेरा तो भाई आप जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। एलोवेरा से आपके चेहरे पर जो ड्राइनेस होती है वो खत्म हो जाती है, आपके चेहरे पर एक्नी का मसला है वो खत्म हो जाता है, आपके चेहरे की स्किन स्मूथ हो जाती है, क्लियर हो जाती है और आप हमेशा के लिए खूबसूरत हो जाते हैं। तो जब आप इस्तेमाल करते हैं जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये आपकी जल्द को नरमी मुलायम करती है और आपकी जल्द को हमेशा तरोताजा बनाए रखती है, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें ऐड की गई है वो सारी आप लोगों की स्किन के लिए फायदेमंद है, और साथ साथ जबकि आप इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होने लग जाती है। जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो स्किन है ना वो किसी भी टोन की हो तो आपको बेफिक्र होकर लगानी चाहिए, क्योंकि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। और जनाब सबसे बड़ी बात कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो वो ये जरूर आप देखा करें कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए है या नहीं। तो जब आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए प्रोडक्ट है, हर कोई लगा सकता है, लड़के लड़कियां सब ही लगाएंगे और साथ साथ खूबसूरत हो जाएंगे। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइट एज ब्यूटी सोप भी मिल रहा है। व्हाइट एज ब्यूटी सोप आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी व्हाइट एज का ब्यूटी सोप आप परचेज करेंगे, और साथ साथ अगर आप साबुन नहीं लगाते या फेस वॉश लगाते हैं तो आपके लिए व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश मौजूद है जो कि आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और साथ ही साथ अगर आप एक्ने की वजह से शदीद वाला परेशान है तो भाई परेशान मत हो, ये वैसे भी जब गर्मियों का सीजन आता है ना तो बहुत से लोगों के चेहरे पर ये एक्ने का मसला ना ये आना स्टार्ट हो जाता है, चाहे आप टीनेजर्स हो या फिर बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे उनकी एज चाहे कितनी भी हो ना लेकिन उनके चेहरे पर अगर एक मरतबा एक्ने आ चुका ना तो उसने ये बोलना है कि भाई मां हानिकारी को नवे तू मामा इते उनम ता सके ताने एक्ने के चो बाबा हलो आने ताजी मोकल थी भैया। सो एक्ने के खत्म कयो, एक्ने जलाए डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने जिकवाने ही ट्यूब अवेलेबल आ तवा जलाए तवा ही एंटी एक्ने ट्यूब लगाए सगो था जको डॉक्टर पिंपल जी नाले सा है। डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब आहे जको आयुर्वेदिक फार्मुलेशन तैयार थियल आहे, तवा दुकानदार के चंदा ना बाबा असा के डॉक्टर पिंपल ट्यूब जो व्हाइट एज वारन जो आहे तो वो तवा के इजी ले दे छरीदा, उनका अलावा लगाने जो तरीकेकार बिल्कुल आसान आहे। तो जको ही डॉक्टर पिंपल वारो एक्ने वारो ट्यूब आ ना इनके तवा राजे टाइम लगाएं था, राजे टाइम तवा बिल्कुल लगायो नी, हम अगर लगाएं चाहियो था तो थोड़ो मतलब थोड़ो चीजों जके ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी वेन, पर तवा राजे टाइम लगायो डाडो मुनासिब वक्त हुंदो आहे। सो पांजो मुंह जको ना अच्छे तरीके से साफ कयो, धो पांजे हथन के साफ कयो, सफा धोई साफ सुथरा थी करे कोई तवा पांजे चेहरे ते डॉक्टर पिंपल जो जको ट्यूब आ ना यो अप्लाई कंदा, जिते जिते दाणो आ, जिते जिते निशान आ, जिते जिते एक्नी आ, जिते जिते पिंपल आ, जिते जिते तां जो कोई निशान आ या जिते कोई सड़न जो निशान आ कट जो निशान आ उन सभी निशानन के तवा जमा करे उते सभी ते तवा डॉक्टर पिंपल जो ही ट्यूब लगाईंदा, ए ट्यूब लगाण का पोई तवा छ डीदा सुबह जो थी करी तवा के दोबारा जको पने फेस वॉश करनो आ है, उन का पोई तवा दिसना दा बाबा तवा जे चेहरे ते जको रिजल्ट्स है ना अचन शुरू थी वया है, नवा कम स्टार्ट थी वयो आ। सो तवा लाजमी लगाजो, तवा जी खूबसूरती वधंदी वेंदी। उन का अलावा एकडो बयो प्रोडक्ट आ जको सफा असा सभी जो राज दुलारो थी वयो आ है, जो नालो आ है व्हाइट एज जी लवली क्रीम। सो व्हाइट एज जी लवली क्रीम जे तरफ अगर असा आचू त हन जे बारे में तवा के नॉलेज हुजन डाडी जरूरी आ है। तो व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना ये तमाम जबरदस्त क्रीम है, व्हाइट एज की लवली क्रीम जो है ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन सा तैयार थियल है, जिसके अंदर ट्री वाइटमिन जा कैप्सूल मौजूद है, समझो था जिसमें हर तरह जो वाइटमिन तवा के मिली वेंदो, चाहे वो वाइटमिन B3 हो, वाइटमिन सी हो, वाइटमिन ई हो, वाइटमिन डी हो, हर वाइटमिन इन के अंदर मौजूद है, ट्री वाइटमिन सा, समझो था। उनका अलावा वाइटमिन से भरपूर है, व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है इनके अंदर सनस्क्रीन भी मौजूद है, सनस्क्रीन जो ना वह इन लाइन भाई कई वही है अंदर तुम इस्तेमाल कर खूबसूरती भी मिले स्किन की हिफाजत भी थी सके। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम तुम इस्तेमाल करूबसूरती मिली तवी स्किन प्रोटेक्ट रही अगर कोई भी मेकअप नथा यूज करण चाहियो तवा कोई भी एड़ो प्रोडक्ट नथा लगाए सगो जेको तवां जी जेको ना गर्मी जी मौसम में तवा के थोड़ो डिस्टर्ब कंदो हो जे तो तवा व्हाइट एज जी लवली क्रीम लगाए सगो था जेका लाइट वेटेड आहे और
मतलब इजी आ हिन जो फार्मूलो बस तव्हां ॾींहं जो लॻायो सुबुह जो लॻायो मंझंदि जो लॻायो राति जो लॻायो जॾहिं टाइम दिलि चवे लॻायो हिन में कोई बि एज जो लिमिट नाहे तव्हां हर एज में लॻाए सघो था हिन जो जेको टेक्सचर आहे न ॾाढो स्मूथ आहे ॾाढी वी आई पी क्रीम आहे सो तव्हां लॻाईंदा त तव्हांखे पाण मज़ो अची वेंदो सो तव्हां वाइट एजी लवली क्रीम त लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो जेके माण्हू इहो सोचींदा त बाबा असां नाइट क्रीम नथा लॻाए सघूं असां फलाणा हेवी प्रोडक्ट न लॻाईंदा आहियूं त बाबा तव्हां वाइट एजी लवली क्रीम हिकु दफ़ो मुंहिंजे चवण ते लाज़मी लॻाए ॾिसजो सो वाइट एजी लवली क्रीम तव्हां सभु लॻायो ऐं सफ़ा लवली लवली थी वञो उन सां गॾो गॾु ई तमामु प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां ईज़ीली लॻाए सघो था किथां बि वञी पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां परचेज़ करे सघो था अगरि न बि मिलनि था त उन जे लाइ तव्हां डायल कयो जनाब 03-15-799-0595 ही नंबर तव्हांजे आसानी जे लाइ आहे तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां वञी पुछा करे सघो था मिलनि था त बढ़िया नथा मिलनि त पोइ तव्हां हिन नंबर ते राबितो करे सघो था ठीकु आहे सो राबितो कयो बाबा अवेलेबल कराईंदा वञो उन खां अलावा जेको आहे न त हाणे तव्हां वञी ईज़िली वठी सघो था सो मूंखे हीउ वारो गानो हलाइणो हुयो हो त हरू भरू हली वियो ओके जी सो प्रोग्राम आहे वाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वञे पियो वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट किताबनि सां तव्हांजी सिदरा तव्हां सां गॾु मौजूदु आहे मूं सां गॾु केरु आहे ॿुधाईंदा वञो पिया तव्हांजा मैसेज आहिनि तव्हांजा कॉमेंट आहिनि ऐं फेसबुक वारो पोस्ट खे लाइक ऐं शेयर कंदा हलो जे ख़बर पए बाबा जोश में आयो

ओके जी, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी संडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान. कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं कैसी हैं? फजीला सिंधी और उसके अलावा हैं हमारे साथ अरीबा. ओ प्यारी आपी जान, प्लीज प्ले ये वाला गाना. बिल्कुल जी, ये वाला गाना लगाते हैं आपके लिए. और मेरे पर खास अब्दुल्ला महर हमारे साथ ही. वालेकुम अस्सलाम बाजी. व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम नाइस है. सॉन्ग सुनाए शमन का. ओके जी ओके. एरम हमारे साथ कहती आपी मुझे भी सॉन्ग सुनाओ. जी मैं कोशिश करती हूँ सबके गाने लगाए. और ये मीरपुर खास से शुएब महर हमारा शो सुन रहे. शुएब आपको भी वेलकम करते हैं. अब्दुल्ला महर आप क्या कहते हैं कि बाजी व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम बहुत अच्छी है, जबरदस्त क्रीम है. बिल्कुल जी आप इस्तेमाल करते रहिए, ऐसे ही हमें बताते रहिए. और गुलाम शबीर तुनियो भाई है फ्रॉम कंबर. हाई आपी, आप कैसी हैं? गुड आफ्टरनून. हम भी अच गया आपके शो में. शो इज ब्यूटीफुल. आप ही सॉन्ग तो सुनाए मंजूर सहिरानी की आवाज में है. अदम ॾिसां थी गानो मूंखे मिलियो त तव्हांजे लाइ हलायूं था. ठीकु आहे. और ये बेवस हमारे साथ है. बेवस जेडे बलोच दरगाह साईं जमाल शाह से. ओके जी, मोरो से आप हमें सुन रहे थे. अस्सलाम वालेकुम अलैहि सलामत बाजी. यकीनन आप ठीक होंगी और ऐसे ही हमेशा हंसी मुस्कुराते रहे. बहुत शुक्रिया भाई जान, आपको वेलकम करते हैं. ये हैं जी अस्सलाम वालेकुम आपी जान. आइए फादिली लाशारी. काफी टाइम के बाद आपके शो में शामिल हो रहा हूँ. टॉपिक जवाब में हर वक्त तैयार नहीं रहता. आज ओएसटी तो सुनाइएगा पोएट्री के साथ. ओके, और आपने सबको सलाम दिए हैं. सो वालेकुम अस्सलाम.

दोस्त को लाइक और शेयर करो। अच्छा दर्दे दिल हमारे साथ मौजूद है, घर जाके शो सुनूंगी, आप कहीं शायद बाहर हैं, वेलकम करते हैं स्वीटी को। और हमारे साथ जी, अच्छा कुछ कमेंट्स ना आप लोगों के ऊपर चले गए हैं, तो जिनकी कमेंट नहीं मैं पढ़ सकी हूँ तो जरा काइंडली दोबारा शेयर कीजिए हमारे साथ। ये गाना किसी भाई ने मुझे फरमाइश कर दिया था, तो उनको डेडिकेट करते हैं। अली अकबर बरोही भाई हमारे साथ मौजूद है, वेलकम प्यारे भाई। गुलाम हुसैन हमारे साथ है, हेलो। इखलाक बलोच कहते नाइस यो आंसर, बिना वजह रेडी असान छू कुराड़ियों तेनियो आए इन लाए असान तैयार रही नाहियों थींदा। वाह वाह क्या बात है। अच्छा किशोर भाई कहते अदी बचपन का हमेशा दोस्त आस पास वारा पड़ोसी कदें भी सामू इंदा हुआ ये चवंदा हुआ दे खबर तैयार लगो पयो आही किथे वनी पयो छा जो साग्यो हाल अन्या ताई आहे, यानी तवा की आदत आ हमेशा का तैयार रहण जी। या वेसे सुठी गाल हुंदी थव, हमेशा ये चिकना रहो। जेको मानो डिसे दे छे दियो खबर आ रे वनी पछा बिला।

राजा खान भाई हमारे साथ मौजूद है. हेलो इमरान अली उजन भाई, मुमताज मलाई बिल्कुल आपको सुनाएंगे. अच्छा इतना मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे. सनोला बिरोही भाई वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद जमान वालेकुम अस्सलाम. वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है. वरियाम कैसे हैं, ठीक ठाक. और ये फिरोज अली बिरोही हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम जी. अच्छा अनवर भाई कहते हैं जे क्रीम में एतरा वाइटामिन हूंदा उहा क्रीम त लाजवाब हूंदी नी. बिल्कुल बाबा बिल्कुल, तव्हां इस्तेमालु ज़रूरु कजो वाइट एसी लवली क्रीम. जेके चवंदा आहिनि त बाबा असां फेयरनेस क्रीम लॻाईंदा आहियूं, असां नाइट क्रीम नथा लॻाए सघूं, तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम आहे वाइट एसी लवली क्रीम. हाणे ॾिसो मां हर कंहिंजे लाइ हर हिकु प्रोडक्ट खणी आई आहियां. कोई चवंदो आहे असां साबुण नाहे लॻंदा, असां फेस वॉश लॻाईंदा त हुनजे लाइ फेस वॉश आहे. कोई चवंदो आहे असां नाइट क्रीम नाहे लॻंदा, तव्हांजे लाइ फेयरनेस क्रीम आहे. कोई चवंदो आहे असां एक्नी वारो ट्यूब लॻाइणु चवंदा, तव्हांजे लाइ एक्नी वारो ट्यूब आहे. त हर प्रोडक्ट तव्हांजे लाइ आहे बाबा. हाणे तव्हांखे भॼण कोन ॾींदासीं, तव्हांखे इस्तेमालु कराईंदासीं की तव्हांखे ख़बर पए त वाइट एस जा प्रोडक्ट मार्केट में आहिनि केतिरा ज़बरदस्त आहिनि. अच्छा हिदायत लगे थे टॉपिक, वैसे आजकल वजह बनी हुई है इतनी शादियां हैं कि बंदा तैयार ना भी हो तो रिश्तेदार तैयार कर ही देते हैं इतनी गर्मी में भी. ये तो वैसे सही बात है. अनवर भाई कहते शादी वाले दिन तैयार हुए थे, सही किया था या गलत आप बताएं. सही किया था भाई. ओके जी. महर इरफान सियाल साहब कहते नाइस होस्टिंग नेम आरजे सिद्धरा मुस्कान, बहुत शुक्रिया जी आपकी नवाजिशें. और आपको भी वेलकम करते हैं महर इरफान सियाल साहब. और टाइम आ चुका है यहाँ पर जरा न्यूज ब्रेक की जानब जाते हैं, उसके बाद हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे. वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में. आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए. टॉपिक को फॉलो करते रहिए. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं. सो आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए, खूबसूरत होते जाइए.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: It's 2 PM. This time check is brought to you by
2: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: विच ओभर जी सूरतहाल अहम मोड़ ते आहे छकतान जी बीहर शुरुआत कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। चीनी सदर शी जिनपिंग जी रूसी सदर सां मुलाकात दौरान ॻाल्हि ॿोल। चीनी सदर शी जिनपिंग चयो त जंग जे ख़ात्मे सां आलमी तवानाई सप्लाई जे सहकाम ऐं आलमी वापार में रुकावटूं घटाइण में मदद मिलंदी। ॿिनि ॾींहनि जे दौरे ते चीन पहुतल रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन चयो त रूस ऐं चीन जे लाॻापनि में गैर मामूली वाध आलम इस्तेहकाम में मददगार साबित थींदी। ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटजिक सहकार जी गॾियल वधाई ते सयूं कयूं वयूं।
1: ईरान खे हाणे वॾो लोडो ईंदो, वक़्तु बि घटि अथसि, कुझु ॾींहनि में हमिलो करे सघूं था। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त सूमर वारे ॾियारे ते जंग शुरू करण में सिर्फ़ कलाक बचियो हो, ईरान जंग तेज़ीअ सां ख़तम करे छॾींदासीं।
0: जंग में वापसी जी सूरत में अमेरिका खे घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे उन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज रद्द अमल ॾींदासीं। ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ीअ जो रद्द अमल। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी जो चवणु आहे त अमेरिका धमकीअ खे अमन जो मौक़ो बणाए पेश करे रहियो आहे, असां कंहिं बि जारियत जो मुक़ाबिलो करण जे लाइ तयारु आहियूं।
1: अमरीकी नायब सदर हिकु तरफ़ ईरान सां ॻाल्हियूं में अकबराए जी दावा कई त ॿिए तरफ़ ईरान ते हमलनि जी धमकी बि ॾिनी। अमरीकी नायब सदर जेडे वेन चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि में अहम अगभराई थी आहे, ईरान मुआहिदो करण चाहे थो, ईरान खे एटमी हथियार रखण वारी शर्त तां हथु खणणो पवंदो, ईअं न थिए त ईरान ख़िलाफ़ जंग ॿीहर शुरू कंदासीं।
0: अमेरिकी सेनेट ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। परॾेही मीडिया मूजिबि ठहराउ 47 वोट्स जे मुक़ाबले में 50 वोट्स सां मंज़ूर थियो। जंग सबबि अमेरिका समेत सॼी दुनिया जी मईशत खे वॾो झटको लॻो आहे। परॾेही मीडिया मूजिबि सेनेट बाद ठहराउ अमेरिकी ऐवान में पेश कयो वेंदो। हलंदड़ हफ़्ते ई वोटिंग जो इम्कान आहे ऐं इहो बि इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ अमेरिकी ऐवान मां बि मंज़ूर कयो वेंदो।
1: वफ़ाक़ी हुकूमत ईद उल अज़हा लाइ 3 ॾींहनि जी मोकल जो ऐलान करे छॾियो। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरीअ सां काबीना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी कयो। 26, 27 ऐं 28 मई ते मोकल हूंदी।
0: आबाशी खाते किरोड़ रुपया किथे ख़र्च कया, वाहन शाखनि जी हालत ख़राब, वधीक 1 अरब रुपियनि जी स्कीम बि तयार। लाड़कानो ऐं शिकारपुर ज़िलनि में आबाशी खातो ग़ैर फ़ाल बणियल। शिकारपुर जी बेगारी केनाल, सिंध केनाल, गोह शाख, लुंडी शाख समेत ॿियनि शाखनि ऐं वाहन जी खोटाई न थियण समेत टुटल दरवाज़नि जी बि मरम्मत न थी। आबाशी खाते लाड़कानो में मोरा लूपबंद जे मथां पासे जी मरम्मत जे लाइ 1 अरब रुपियनि जी स्कीम जी मंज़ूरी ॾिनी। 2025 जी बोर्ड में मोरा लूपबंद बाबति आबाशी खाते मॉडल स्टडी कराइण बदिरां सिर्फ़ तजवीज़ुनि जे बुनियाद ते 1 अरब रुपियनि जी स्कीम तयार कई हुई।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हौसल मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
5: सुना साईं, कुछ खबर अथव?
6: छा थियो आहे सोणी?
5: ॾींहनि खां सोलर वारी बैटरी ख़राब थी पई आहे, नई बैटरी कॾहिं आणींदा?
6: सोणी, हिन महांगाई जे दौर में नई बैटरी जी ज़रूरत ई कोन्हे। पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा। उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओं करे छॾींदा।
5: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
6: न न सोणी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी।
5: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे ई वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो।
6: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे UPS ट्रैक्टर।
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: जहां उम्मीद के दिए जलते हैं,
3: रोशनी का
7: का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद रابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، 03000002734، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور، 03013865453۔
8: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
9: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
8: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
9: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्द हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात फैलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हजरात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठाए।
10: खुशखबरी खुशखबरी हाँ अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन आई नहन एलर्जी कॉस्मेटिक आई वचड़ंदड़ बीमारियों जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोजानो शाम जो असर नमाज खां इशा जे नमाज ताईं आई हर आचर ते सुबुह जो 9 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराबपुर। वधीक राबते जे लाइ 03385569 03003385569।
11: This program is brought to you by
12: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: एड्रेस
1: It's 2:15 PM.
2: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94.

0: आप लोगों के लिए सिर्फ दो प्रोडक्ट है, जैसे कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम है और डी स्किन का फेस वॉश है. ये दो प्रोडक्ट्स अभी तैयार किए गए हैं. अगर आप मजीद जो है ना अच्छा वाला इन्हें प्यार दिखाते हैं, अच्छे वाले प्रोडक्ट का जो है ना वो रिव्यू देते हैं, अच्छी अच्छी आप प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करके उन्हें बताते हैं, तो ये मजीद प्रोडक्ट्स में जो है ना वो इजाफा करते जाएंगे. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए चाहे आप फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश मौजूद है. अगर आप डी स्किन की ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी ब्यूटी क्रीम भी मौजूद है. अगर दोनों लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल जी दोनों लगाते जाइए. और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके लिए नंबर है जनाब 03-15-799-0595. ये नंबर आप लाजमी डायल कीजिए ताकि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए और आप इजीली वहां से जाकर परचेज कर सकें. तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए, खूबसूरत हो जाइए, खूबसूरत रहिए, क्योंकि ये आपका हक है, आप डिजर्व करते हैं. तो अच्छे वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट हैं जिनमें डी स्किन की ब्यूटी क्रीम है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये विटामिन ई बीट से तैयारशुदा है, दो रातों में आप लोगों को रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है. जनाब क्या बात है, समझ रहे हैं, दो रातें बस आप इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को ना बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे. और उसके अलावा माइक्रो बीट्स फार्मुलेशन से तैयारशुदा है, आपके चेहरे के डार्क सर्कल्स रिमूव हो जाएंगे, आपके चेहरे पर जो निशानात होते हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाएगी और आप ग्लो करते रहेंगे. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं, तो जाइए परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए. साथ में अगर आप डी स्किन का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो वो भी लगाइए जनाब, वो भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का फेस वॉश है. और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हमें बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं. ओके, सो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि क्या आप भी क्या कभी बिना वजह जो है ना वो तैयार हो जाते हैं, या फिर आप ऐसे है कि तैयार होने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कि नहीं भाई हाँ तैयार छो थे भला गढ़ो जरूर. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, मैंने देखे शादी ब्याह हो कोई इवेंट हो तब भी वो जो है ना वो कम तैयार होते हैं, और कुछ लोग बड़ी ऐसे होते हैं ना कि बस कुछ भी हो, कुछ हो ना हो, बस वो हमेशा तैयार रहते हैं. तो ये अच्छी बात होती है, वैसे तैयार रहा करें, हमेशा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रहा करें. और ये एक और पर्सनल मेरी बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगी. यहाँ पर जो है ना आज हम कॉल्स लेने वाले हैं, ठीक है, प्रोग्राम में. ओके, सो कॉलिंग वाला सेगमेंट हम जरा स्टार्ट कर लेते हैं. कॉलिंग नंबर हमारे प्रोग्राम का होने वाला है 03-3221-3228. सो 03-3221-3228 के ऊपर आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कॉल करेंगे और बताएंगे कि आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं वाइट एज के प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ये बताने के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं. और उसके अलावा जो है ना हम बात करेंगे. और अगर आप भी कॉल कर रहे हैं तो बिल्कुल आपकी कॉल हम पिक करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट कॉल हमारे प्रोग्राम में आ रही है तो हम जरा पिक करेंगे और देखेंगे फर्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है. जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम
0: सलाम, के रस मौजूद आप दुआ अथव बुद्धि शरीर सब दुआ मुंजी अथव ये चवंदा ना मानू केंजी दुआ लगी थे दा मुंजी दुआ लगी थे बिल्कुल हुआ सो मुंजी दुआ अथव अरे दुआ दे हाल अहिवाल केड़ो प्रोडक्ट लगाई थी कोन लगाई थी छा कयो थई
1: हां लवली लवली थियो
0: लवली वरती थई
1: हां वठो थी आयो
0: थोड़ा ये पार पता दे जे मके खबर पे त तू वाके लवली वठी आई या
1: वादी भी सेंटर से के मुदन काऊ है वर ऊटी गाल कर मई
0: हेलो ये न कर बाबा ये न कर दुआ दिस अच्छा टॉपिक ते दुआ छा चवंदी
1: हां मुए रेडी ऑन सब
0: टॉपिक यो आहे त छा तव्हां कॾहिं ईअं बिना वजह तयार थींदा आहियो? कुझु माण्हुनि जो शौक़ु हूंदो आहे न बिना वजह ई बसि तयार थियण जो, वञ घर त बसि तयार लॻा वेठा हूंदा आहिनि ईअं. अच्छा पहिरियां थींदी हाणे न ईअं छो हाणे छो वॾा थी विया आहियूं ईअं चओ हाणे वॾा थी विया आहियूं अकुल अची वियो आहे चलो दुआ कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदो आहियां दुश्मन खे अॼु बि सलाम आहिनि बसि चलो दुश्मन खे सलाम दुआ जे तरफ़ां सो थैंक यू सो मच दुआ तव्हां असांजे प्रोग्राम में कॉल कई ऐं तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम लगाया था. नेक्स्ट टाइम तव्हां कॉल कई त तव्हां खां लाज़मी पुछंदमि बाबा निशानी ॿुधायो ईअं असां यकीन कोन कंदा आहियूं सम्झो था. सो कॉलिंग नंबर आहे 03-3221-3228. नेक्स्ट कॉल वठूं था ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर कहिड़े सां गॾु मौजूदु आहे. हलो अस्सलाम वालेकुम. सदको अजो यो करास जोबरियो आ कॉलियो मायू मायू
1: कंपरा
0: आइली नालो वदा पांजो माई
1: सुणी
0: अल्लाह नालो तो बुदाए पांजो
1: लेला कर
0: लेला लेला लेला खुशा सदको वन्याय कडा जाहिर थिया
1: सदको वन्याय कंपर न जाती है
0: खुश लगी पया आदी भी खुश है
1: जी हां बात भी खुश
0: है बेओ बुदाए प्रोग्राम बदो पया लेला
1: बाजा बाजी के सत्ता कर हां बताऊं पया
0: चलो मुखे बुदाए टॉपिक दे लेला चा चवंदी तैयार थे शौक अथे या बस ये लेला घर जा ताना खाई खाई सिदरा शो में गाना बुधंदा ये न अच्छा लीला मुझे बुधायो तो तुम वाइट एज जा कोई पाड़क इस्तेमाल कया या डी स्किन जा कोई लगाने जो इरादो आहे या मना
1: अच्छा इरादो आहे हाने बुधाने ते आयो रमजान में तां छडियो त वरी हाने वापस
0: जाय चलो चलो तां के वापसी ते वेलकम चाहू था केन दोस्तन के याद कंदी लीला
1: आई नी केन दोस्तन के याद
0: सलाम डे मिड़े के या बस बाय बाय कयो आने शामिल लीला परे माशाल्लाह सुणी सुठी सबाजड़ी छोकरी आहे उनखां अलावा तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया जो ना प्रोग्राम में तव्हां कॉल कयो पिया कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-88 कॾहिं कॾहिं मूंखे लॻंदो आहे शायदि मां नंबर ग़लति न ॿुधाए वञा पर सदाई सही हूंदो जी जी प्रोग्राम ॿुधो पिया टॉपिक ते तव्हां छा चवंदो चलो इहो बि ज़बरदस्त आहे कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदे ॿियो ॿुधायो तव्हांजे ॻोठ में मिली अथई वाइट एज जी क्रीम या डी स्किन जी क्रीम जी त पोइ तव्हांखे जेको नंबर प्रोग्राम ॿुधायो हुन नंबर ते तव्हां राबितो कयो न त तव्हांजे ॻोठ में अवेलेबल कराए छॾनि ॻाल्हि ई सवली चलो चलो ठीकु आहे दोस्तनि खे यादि करे वठो जी जी फ़ाइज़ा त वैसे बि हलाईंदा
1: आहियूं
0: सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भाउ बिल्कुल सी कॉलिंग नंबर 0332-1322-88 बिल्कुल सी कॉल कीजिए आपकी कॉल हम अटेंड कर रहे हैं आपसे बात करना चाहते हैं आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं क्या आप वो इंसान है जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं बताएं जरा मुझे जल्दी जल्दी से और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों की कॉल्स हम पिक करते जा रहे हैं ओके सो ये वाली कॉल हम पिक करते हैं देखते हैं कौन कॉलर हमारे साथ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम सफा मजे में फारूक भाई छाला खुश आयो माशाल्लाह माशाल्लाह मामी सफा मजे में आए प्रोग्राम बुधो पिया ओके मन मां खुश थिया न त फारूक भाई मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधंदो आहे चलो टॉपिक ते छा चवंदा बसि इहो सफ़ा भलो कंदा आहियो अला चलो ज़बरदस्त मूंखे इहो ॿुधायो तबियत वग़ैरह सही अथव ठीकु आहियो वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमाल करण जे बारे में कोई इरादो वगैरह आहे? लवली क्रीम त वठजो तव्हां ज़रूर।
1: ख़बर अथव अलाह यकीन कंदो तव्हांखे ख़बर आहे पुट, मां तव्हां सां छा मां ॻाल्हाइण सोचे बि न सघंदो आहियां। स्किन ख़राब थी वई हुई, एॾा किनी सोया जंहिंजी हद न आहे, पोइ स्किन वाइट मां जेको आहे सप्लाई कयमि त अलमदा मुंहिंजो चहिरो साफ़ थी वियो।
0: चलो ज़बरदस्त, माशाल्लाह इहे सुठी ॻाल्हि आहे। लवली वारी जेका क्रीम आहे न वाइट एज़ी, उहा बि ट्राए करे ॾिसजो। उहा त तव्हां ॾींहं जो लॻाईंदा, ॾींहं जो लॻाए करे काॾे बि घुमण वञो बस, उन सां बि तव्हां लॻंदो त तव्हां बस रेडी आहियो काॾे वञण जे लाइ। चलो ज़बरदस्त, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदो प्यारो भाउ? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फारूक भाई, तुम प्रोग्राम में कॉल कई, मोहब्बतूं अवाजो प्रोग्राम बुधंदा आयो, एतरी चाह मोहब्बत से असांजी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल भी कंदा आयो। सो बिल्कुल जी, कॉलिंग नंबर 0332132288 ही वाली कॉल दिसूं ता खेर असा गड मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, आज कैसे हो? ठीक हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कौन भाई हमारे साथ मौजूद है?
2: कुमार मेघवाड़ बात कर रहा हूँ, बाबू और घर पार करते।
0: ओके प्यारे भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक। हाँ बस नेटवर्क का थोड़ा इशू होगा ना, नेटवर्क हाने सही किथे भी न तो हले। मसलो थी वो है मुख्य बुधायो तो अज जो टॉपिक बुध है प्रोग्राम के बारे में
2: प्रोग्राम तमाम भलो तकरीबन कुछ सालन का बुधो पे पर शामिल ही है साथियों।
0: जी पहले दफो तो आज कॉल लगी है।

0: It's 2:30.
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद अइम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन दिहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर

पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 96 8

0: ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस: रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-33-8569।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो। जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
4: मेरा नाम डॉक्टर आफ़ताब अहमद है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइज सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।

0: जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। तो ये शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरतियां हासिल करते जा रहे हैं और अपनी खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाते जाइए जनाब खूबसूरती, कंहिं ना वणंदी बाबा हर कोई चाहींदो त असांजी खूबसूरती जेका न वधंदी रहे। तो तव्हां वधाए सघो था जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो। ओके जी, अगरि तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हांजे ॻोठ में नथी मिले, तव्हांजे शहर में नथी मिले, तव्हांजे पाड़े में नथी मिले, त हुन जे लाइ तव्हांखे नंबर आहे जेको डायल करणो पवंदो। नंबर आहे 03-15-799-0595 03-15-799-0595। ही नंबर तव्हां डायल कयो, जेको बाबा तव्हां डायल कंदा त तव्हांखे रिस्पॉन्स मिली वेंदो। नंबर ते तव्हां ॿुधायो त तव्हां प्रोग्राम ॿुधी करे आया आहियो, तव्हां पंहिंजे ॻोठ में अवेलेबल कराइण चाहियो था, तव्हांजे शहर में नथी मिले, व्हाइट एज जी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन जी प्रोडक्ट्स तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻाइण चाहियो था, उहो तव्हां हुननि खे ॿुधायो जी तव्हांजी आसानी थी वञे, तव्हांजे लाइ अवेलेबल कराए वञनि। ठीकु आहे, सभ खां सवली ॻाल्हि हुन खां अलावा अगरि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया त मूंखे ॿुधाईंदा हलो कहिड़ो प्रोडक्ट तव्हां लॻायो पिया। अगरि तव्हां अञा इरादो कयो आहे त बाबा एतिरो एतिरी देरि इरादा न आहिनि कबा, बसि करे ॾेखारियो तॾहिं ज़िंदगीअ में अॻिते वधंदा। ओके जी, सो लुबना हमारे साथ मौजूद थी। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान लुबी। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक ठाक कहती हूँ, आपके साथ साथ हूँ। आज कोई अच्छा सा सॉन्ग मेरे नाम करो और सलाम टू माय बेस्टी जी आलिया बासी निदड़ी और सब क्यूट लड़कियों को। ओके जी, वालेकुम अस्सलाम। और निदड़ी बस कल्ला आई वरी सागो गुम थी वही, अलाए कड़ो मसलो आ छोकरी सा। और फजीला भी हमारे साथ मौजूद है। फजीला मेरी जान, आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और ये है जी, हाय बाजी, कल गाने जी फरमाइश मुनव्वर मौलाई जी आवाज में याद करो, नहीं चलाया था लाड़काना से आप हमारे साथ हैं। सोनारो बाजार खां इमरान अली बिरोही भा। इमरान भा, बिल्कुल तव्हांजी गानो मतलब याद अचे थो त तव्हां मुनव्वर मौलाई जो गानो चयो, पर कहिड़ो गानो चयो इहो यादि नथो अचे। सो बिल्कुल ॿुधी वठंदासीं। और फा देरी सऊद देरी फ्राम नवाबशाह सलामती अदी सफ़ा भलिया, तव्हां ॿुधाए कीअं आहियो। अरीबा कीअं आहे, इहे गाना थो लॻाए? बिल्कुल जी, आप ई गाना लॻाती आहे आपके लिए, बसि तव्हां थोरो सबर कंदा कयो। और इरम भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। बेवस जेड ए बलोच हमारे साथ है, कहते हैं दरगाह साईं जमाल शाह बांदी रोड मोरो खां। अच्छा, कहते हैं गुलन भी घाव डिना त कंडन खे छा चवां, मां पंहिंजा पंहिंजा न थिया त धारन खे छा चवां मां। इहा हक़ीक़त अथव अला, बसि कंहिंखे बि कुझु बि न चओ, बसि मुंहिंजो प्रोग्राम ॿुधो। व्हाइट एज जा प्रोडक्ट लॻायो, डी स्किन जा प्रोडक्ट लॻायो, बसि सुहिणा सुहिणा थी वञो, ॻाल्हि ई ख़तमु। और ॻोठ मोहम्मद तैयब थेबू खां हबीबुला थेबू, तव्हांजो शो वेरी नाइस आहे। वालेकुम अस्सलाम प्यारा भाउ, मोहबतूं आहिनि तव्हांजो। कुझु कॉल्स वठी वठूं था, न त बाबा इहो ॿुधण में ईंदो त सिदरा गालियूं नथी वठेव, ॾिसो सिदरा गालियूं वठे थी वठे थी वठे, तव्हां बि ॾाढो सही। ओके जी, सो कॉलिंग नंबर 03-22-13-22-188, तव्हां बि बिल्कुल कॉल करे सघो था। ही वारी कॉल वठूंगा, ॾिसूं केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: केरु अदो असां सां गॾु मौजूदु आहे? जमालदीन भाउ, ख़ुशि आहियो, कहिड़ा मज़ा?
1: अलहमदिल्ला, शुक्र आहे सर, ख़ैर हाल आहे जो ख़ैर
0: जी जी जी, अलहमदिल्ला। प्रोग्राम ॿुधो पिया?
1: हा जी जी, बिल्कुल भाजी ॿुधो पिया।
0: टॉपिक ते छा चवंदा?
1: टॉपिक भाजी, असां ख़ानदानी मायूं माण्हू अहिड़ा हक़ हलायूं जो
0: चलो ज़बरदस्त ज़बरदस्त ॿुधायो त कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया?
1: हा माशाल्लाह,
0: साबुण वठी आया, ज़बरदस्त। ऐं मूंखे ॿुधायो त इस्तेमालु कयो अथव या अञा पोइ कंदो? जी जी ॿुधायो।
1: ब्यूटी साब

0: هيا منا من الطهوة وبعدك يتوبي فابورو مالوغا خشبو داروغا وبعدك يتوبي فابورو مالوغا خشبو داروغا.
1: वाह वाह वाह वाह शाह गाल कजे केड़न दोस्तन के याद कंदा ओके ओके ओके थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा बात आंजो मोहब्बत लास्ट में थोड़ो ताजो आवाज कटजी वयो वाह सही भाजो टैलेंट डाडो भलो आयो डाडो वीआईपी वीआईपी गाना बुधाइंदा ना संजी प्रोडक्ट से सो तमाम भी कॉल करी सको था कॉलिंग नंबर आई 0332123228 नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: के रस सगडा
2: सीमा लारका ने था
1: नालो बुधाय जो
2: सीमा
1: सीमा सीमा छाला खुशायो
2: जो हो काम करे
1: मां भी मजे में प्रोग्राम बदो प्या सीमा कुछ भी न माना बस बाहर बने थे प्रोडक्ट को इस्तेमाल चलो लाड़काने भी तो मिलन था रेशम गली वे ना वी अच वे इधर ही शॉपिंग न कई दई छा अन्या
2: तैयारी करना वठी नम
1: हां वने शॉपिंग करना त वठी जा वाइट एज क्रीम या वडी स्किन जी या वाइट एज लवली क्रीम वठी जा चलो सीमा बेओ छा चवंदो
2: ये डॉक्टर कान कलम
1: जी जी शामिल क्यों
2: ये को आप कान के काम मुझ रही है
1: जी
2: आई लेना करू
1: हम
2: पार्टी में कान के काम मुझे थी
1: जी
2: सिद्रा मुस्कान का प्रोग्राम होते थे
1: जी सिद्रा मुस्कान ही प्रोग्राम होते थे चलो चलो सुठी गाल है माशाल्लाह थैंक यू सो मच सीमा तुम प्रोग्राम में कॉल की जी जी चलो थैंक यू भाई सिद्रा मुस्कान भी असो प्रोग्राम बुधे भाई कॉलिंग नंबर आए 0332123228 नेक्स्ट कॉल हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केड़ो भास से गड़ा
3: अभी अली को कॉल तो गलाया
1: नवाब शाह का कॉल किया खुश आयो भा प्यारा
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ में अभी तुम खुश आयो
1: माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया प्रोग्राम बुधो प्यारा भा नंबर प्रोग्राम नंबर कॉल कर
3: अभी मां गोल चक्र मां पुछा कयो कोन तो मिले नवाब जा गोल चक्र जो गोन पुछा कयो कोन तो मिले
1: चलो ठीक है ताजे गोठ में अवेलेबल कराना जेको नंबर ताक बुदा तो नंबर दे तवा रातो जरूर कजो एकडो दफा
3: जी हां आदि बोलवा ता कदा तो बुदे तो भाऊ मजो सजादला जमाली
1: जी जी
3: अली अदर जमाली अली दोस्त जमाली अभी ऐसा प्रोग्राम लखी बुदो ता
1: थैंक यू ता भाईन जो मोहब्बत है नहीं ये मोहब्बत है जासा प्रोग्राम बुदा रहो आई ता प्रोडक्ट भी लाज नहीं लगा जो थैंक यू प्यारा भा खुश रहो ही सुकून बाबा सदाई खपे प्रोग्राम ता बदो पया ही नेक्स्ट कॉल वठूं ता दिसूं ता नेक्स्ट कॉलर के जैसे सगड़ माचूं ता हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: करे आलम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जैसे सगड़ माचूं ता
2: बस
1: एरम बस एरम शो बस खेल लगो पा तू कुछ लगी पई अम्मा कुछ अम्मा कुछ अच्छा एरम बुधा वया आयो मार्केट को चक्कर बकर आयो अव इधे शॉपिंग कई अव वी आयो प्रोडक्ट जो बुधा थी
2: मार्केट
1: में ओडे वन ओडा मिलन शिकायत खी आया सर पवन कुमार वट न मिलो आप चलो शिकायत गौर कर चलो ठीक है चवंदा सर पवन कुमार के बाबा रखो किरी में वठण वारा जके ना ता वटा वठी वेंदव वञ न जंहिंजी सिक हूंदी त वेंदा ॾिस तूं पंधु करे थी न साॻी चलो चलो एडम थैंक यू सो मच तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई ॿियो छा चवंदी चलो थैंक यू सो मच ॿियो छा बस मिनसा बि ख़ुशि आहे कहिड़ो कहिड़ो ॿुधाए हा सुभाणे हलायां भला हाणे त टाइम ख़तम थी वियो
2: आहे
1: चलो ठीकु आहे थैंक यू सो मच मुंहिंजी प्यारी बस हिरम तव्हांजी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में बिल्कुल जी प्रोग्राम में हाणे असां कॉलिन खे थोरो स्टॉप लॻायूं था छो त बाक़ी वञी 5 मिंट बचा आहिनि असांजे प्रोग्राम में सो इहा असांजी प्यारी इरम हुई वीचारी जेको आहे न ॾाढा पंध कंदी आहे जेके प्रोडक्ट लॻाइणा हूंदा अथसि वञी वठी ईंदी आहे जितां किथां ॻोल्हे सो बिल्कुलु तव्हां बि मोहबत कयो बाबा पंहिंजे चेहरे सां पंहिंजी स्किन जो ख़्यालु रखो ऐं वाइट एस जा ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु करे सघो था ऐं डी स्किन जा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां इस्तेमालु करे सघो था तव्हांजी ख़ूबसूरती खे वधाईंदा तव्हांखे प्यारो सुहिणो बणाईंदा ऐं तव्हां सां वाच चमकंदा वधंदा सो कॉलिंग नंबर आहे जनाब कॉलिंग नंबर खे जंहिं ते तव्हां राबितो कंदा उहो नंबर आहे 03-15-799-0595 हीउ नंबर डायल कयो जी तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते बि हीउ प्रोडक्ट्स अवेलेबल थी वञनि अच्छा किशोर भाई कहते कि दुआ खां धागो कराए ॾे बाक़ी खे दुआ खां वाके धागो कराए ॾियणो पवंदो तव्हांखे तव्हांजी कॉल छो नथी लॻे

अच्छा मुनव्वर मोलाई जो इमरान भा गानो चयो हो मरा तकेला है मरा बिल्कुल बिल्कुल यो गानो ताजो हलाइंदाजी पर ॾिसो करे ता हलायो और दारावन से डॉक्टर राम फकीर हमारे साथ ही जे एम जोगी फकीर हाय सिद्रा डियर आप कैसी हैं प्लीज प्ले आबिदा परवीन जी ओके मैं कोशिश करूंगी कि आपकी फरमाइश भी लगाएंगे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है और उसके अलावा नेमतुल्ला जतोई है नवाब जतोई है बहुत शुक्रिया जी बोथ ऑफ यू

हाय इरशाद अहमद शाह हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, न्यू दिल्ली से हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। अली अकबर ब्रोही भाई हमारे साथ मौजूद है, सकरंट से आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। अकबर भुट्टो हमारे साथ हैं और आप शो में शामिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। वफा मीर मुनव्वर हमारे साथ है, हेलो। सैयदा बुखारी हमारा शो सुन रही है, सैयदा बुखारी वालेकुम अस्सलाम कहती हैं। हाँ जी, बड़े दिनों के बाद आप बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनी है, सो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी से ठीक हो जाइए ताकि आप डेली बेसिस पर हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो सके, ठीक है। हिदायतुल्लाह कहते हैं सदरा तोखा सवा, किसी और का प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत बोले, बहुत से लोग ऑफेंड हो जाते हैं। और ये आदिल हुसैन कहते हैं प्रोग्राम सफा भल्लो आए, बिल्कुल जी प्रोग्राम तो भल्लो आए, पर जॾहिं तव्हां ही प्रोडक्ट जेके ॿुधाईंदे प्रोग्राम में उहे इस्तेमालु कंदा त पोइ तव्हां बि ॾाढा भला थी वेंदा। सो ही प्रोडक्ट इस्तेमालु कयो जी, सुण सुण सफ़ा सुण थी वञो। ऐं उन खां अलावा असांजी पोस्ट खे लाइक शेयर कयो जिन अञा ताईं कोन कयो आहे। अनवर भाउ बिल्कुलु हाणे मोकिलाणी जो वक़्तु सफ़ा क़रीब अची चुको आहे, ओ हिते साम्हूं अचे बीठो आहे। सो हाणे बिल्कुलु तव्हां खां इजाज़त वठंदासीं, वरी इनशाला तव्हां सां मुलाक़ात मुंहिंजी सुभाणे वारे प्रोग्राम में थियण वारी आहे, 1 बजे खां 2 बजे ताईं तव्हांजो सॼो साथ जॉइन कंदा, ॿुधो न विसारींदा। ऐं किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई, सही आहे। सो मोकिलाणी नाहे बाबू, सिन सलामत, सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय, लव यू ऑल।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: हौसन नकवी कुझु ॾींहं अॻु बि तेहरान पहुची ईरानी सदर मसूद पज़ेशियान, परॾेही वज़ीर अब्बास राघसी ऐं ॿियनि ईरानी अख़्तियारनि सां मुलाक़ातूं कयूं हुयूं.

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसा।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, 2 कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर वक्त।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरा पर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरा पर राबते जे लाए 0320180003।

बेटी नहीं बन सकती। यही है मेरा आप सबसे सवाल और यही है हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम इन अवर शो एज यूजुअल जी अमीर प्रकाश FM 88 के लाइव स्टूडियो से आरजे गुलनाज आपके साथ साथ। प्रोग्राम ऑन ईयर है सब दोस्त हमारे और प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही आप तमाम लिसनर्स के लिए इतनी खूबसूरत सी दुआ है, दिल चाहता है बार बार ये दुआ आपको दूं। अल्लाह ताला आपको उतना अता फरमाए जितनी उसकी शान है, उतनी खताएं माफ फरमाए जितना वो रहमान है, और आजमाइशों से वो आपको इतना महफूज रखे जितना वो मेहरबान है। आमीन। अरे बहुत ही गौर तलब टॉपिक है, सोच समझ के आपने रिप्लाई देना है। अगर टॉपिक पे आप बात नहीं कर पाते या बात नहीं कर पाएंगे, आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आप खामोशी से प्रोग्राम सुनिएगा। उन लोगों को मौका दीजिएगा जो एबल है टॉपिक पे बात करने के लिए। आपने सीरियसली आज इस टॉपिक को फॉलो करना है, मुझे बताना है क्या एक बहू बेटी नहीं बन सकती। यही है आज का टॉपिक। और टॉपिक के हवाले से अपने दिल की बात हमें बताने के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने लिखना है MP के एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना करना है 8881 पर। लाइव कॉल के लिए डायल करना है 03136615688।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे।
5: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 9196 851

0: यारा अॼु कल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मिरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मिरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जीअं मिरापुर FM 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मिरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण, 0301-380-8347।
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: Abab Sunengi.
1: ओचितो तहरान पहुचे वियो ज़रिए मुझे मोहसिन नकवी ईरान अमेरिका गारन बाबत ईरानी क़ायद सां अहम मुलाकातो कंदो मोहसिन नकवी कुझु ॾींहं अॻु बि तहरान पहुची ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान परदेही वज़ीर अब्बास अराग़ची ऐं ॿियनि ईरानी इख़्तियारनि सां मुलाकातूं कयूं।

ईरान ऐं अमेरिका जी वेढ़ खे रोकणु ज़रूरी आहे। हिक तरफ़ी गुंडागर्दी ऐं तारीख़ खे तब्दील करण वारनि क़दमनि जी मुखालफ़त करणी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग ऐं रूसी सदर व्लादिमीर पुटिन विच में मुलाक़ात दौरान इतफ़ाक़। बीजिंग में रूसी सदर सां मुलाकात दौरान चीनी सदर ॻाल्हाईंदे चयो त विच ओभर जी सूरतहाल अहम मोड़ ते आहे। छिकताण जी ॿीहर शुरूआत कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। मौजूदा हालतुनि में ॻाल्हियूं वॾी अहमियत रखनि थियूं। पुटिन चयो त आलमी सतह ते इस्तेहकाम बरक़रार रखण जे लाइ चीन ऐं रूस जो किरदारु अहम आहे। चीनी ऐं रूसी सदरनि विच में मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटजिक सहकार जी गॾियल पधिराई ते सहियूं बि कयूं वयूं।

ईरान के हाणे वॾो लोदो ईंदो, वक़्त बि घटि अथसि। कुझु ॾींहनि में हमिलो करे सघूं था। थी सघे थो जुमे या छंछर ते ईरान मथां हमिलो करे छॾियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सूमर वारे ॾियारे ते जंग शुरू करण में सिर्फ़ हिकु कलाकु बचो हो। सऊदी, कतर, यूएई ऐं ॿियनि मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते हमिलो मुलतवी कयो।

जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सीखो है उनकी मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल दींदासीं। ईरानी वॾे वज़ीर अब्बास अराग़ची जो रद्द अमल। ईरानी नायब वॾे वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी जो चवण आहे त अमेरिका धमकीअ खे अमन जो मौक़ो बणाए पेश करे रहियो आहे। असां कंहिं बि जारहियत जो मुक़ाबिलो करण जे लाइ तयार आहियूं। अमेरिकी नायब सदर जी हिकु तरफ़ ईरान सां ॻाल्हियुनि में अॻभराई जी दावा त ॿिए तरफ़ ईरान ते हमलनि जी धमकी। अमेरिकी नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि में अहम अॻभराई थी आहे। ईरान वाइदो करणु चाहे थो ईरान खे हेठि में हथियार रखण वारे शर्त तां हथु खणणो पवंदो। ईअं न थियो जंग ॿीहर शुरू कंदासीं। अमेरिकी सेनेट ईरान जी नाकाबंदी ख़तम करण ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। परॾेही मीडिया मूजिबि ठहराउ 47 वोट्स जे मुक़ाबले में 50 वोट्स सां मंज़ूर थियो। जंग सबबि अमेरिका समेत सॼी दुनिया जी मईशत खे वॾो झटको लॻो आहे। परॾेही मीडिया मूजिबि सेनेट बाद ठहराउ अमेरिकी अवाम में पेश कयो वेंदो। हलंदड़ हफ़्ते ई वोटिंग जो इम्कान आहे ऐं इहो बि इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ अमेरिकी अवाम मां बि मंज़ूर कयो वेंदो।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 80।
1: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सामीन नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं, पोलियो के बीमारी से बचाने

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एट मार्ट बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307-3592120

0: औरतन जे कत्ले आम खिलाफ रेट।
1: नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेट।

ईरान ऐं अमरीका जी वेड़ खे रोकण ज़रूरी आहे। हिक तरफ़ी गुंडागर्दी ऐं तारीख़ खे तब्दील करण वारनि कदमनि जी मुखालफ़त करणी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग ऐं रूसी सदर प्यूटन विच में मुलाक़ात दौरान इतफ़ाक़। बीजिंग में रूसी सदर सां मुलाक़ात दौरान चीनी सदर ॻाल्हाईंदे चयो त विच ओभर जी सूरतहाल अहम मोड़ ते आहे। छिकताण जी ॿीहर शुरूआत कंहिं बि सूरत में क़बूल न आहे। मौजूदा हालतुनि में ॻाल्हियूं वॾी अहमियत रखनि थियूं। प्यूटन चयो त आलमी सतह ते इस्तेहकाम बरक़रार रखण लाइ चीन ऐं रूस जो किरदार अहम आहे। चीनी ऐं रूसी सदरनि विच में मुलाक़ात दौरान ॿिन्ही मुल्कनि विच में स्ट्रेटेजिक सहकार जी गॾियल पधराई ते सहियूं बि कयूं वयूं।

ईरान के हाणे वॾो लोडो ईंदो, वक़्त बि घटि अथसि, कुझु ॾींहं में हमिलो करे सघूं था, थी सघे थो जुमे या छंछर ते ईरान मथां हमिलो करे छॾियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सूमर वारे ॾिहाड़े ते जंग शुरू करण में सिर्फ़ कलाक बचियो हो। सऊदी, कतर, यूएई ऐं ॿियनि मुल्कनि जी दरख़्वास्त ते हमिलो मुलतवी कयो।

जंग में वापसी जी सूरत में अमेरिका के घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे उनजी मदद सां वधीक हैरत गैस रद्द अमल ॾींदासीं। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास राखची जो रद्द अमल। ईरानी नायब परडेही वज़ीर काज़िम गरीबाबादी जो चवणु आहे त अमेरिका धमकी खे अमन जो मौक़ो बणाए पेश करे रहियो आहे। असां कंहिं बि जारीअ जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहियूं।

अमरीकी सेनेट ईरान जी नाकाबंदी खत्म करण ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। परेही मीडिया मूजिबि ठहराउ 47 वोटनि जे मुक़ाबले में 50 वोटनि सां मंज़ूर थियो। सभ्य जी मैशियत खे वॾो झटको लॻो आहे। परेही मीडिया मूजिबि सेनेट बाद ठहराउ अमरीकी ईवान में पेश कयो वेंदो। हलंदड़ हफ़्ते ई वोटिंग जो इम्कान आहे ऐं इहो बि इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त ईरान जी नाकाबंदी ऐं फ़ौज हटाइण जो ठहराउ अमरीकी ईवान मां बि मंज़ूर कयो वेंदो।

एसएसपी सिटी अली हसन, एसएचओ गार्डन ऐं एसआईओ पेशी ताईं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी ऐं डीआईजी दखड़ खे अणॼाण रखियो वियो। पिंकी थाणे ते मौजूदगी दौरान नशे जी हालत में हुई पिंकी खे एसएचओ पंहिंजी ऑफिस में ख़ासि महिमान जीअं विहारियो। ॿिन्ही में पैसनि जी ॾेती लेती बाबति बि ॻाल्हियूं थियूं। इन मामले जी वधीक जांच थियणु घुर्जे। ईद उल अज़हा ते टे ॾींहं मोकल जो ऐलान। 26, 27 ऐं 28 मई ते मोकल हूंदी। वज़ीर आज़म जी मंज़ूरी सां काबीना डिवीज़न नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो।

आबपाशी खाते करोड़े रुपया किथे खर्च कया, वाहन ए शाखुन की हालत बदस्तूर खराब, गैर फाल बणियल आबपाशी खाते ला 1 अरब रुपयन की वधीक स्कीम मंजूर, शिकारपुर की बेगारी केनाल सिंध केनाल गोहर शाख नुंडी शाख समेत बेन शाखन ए वाहन की न कोटाई थी, नई वरी टुटल दरवाजन की मुरम्मत थी सगी, लाड़काने में मोरिया लूप बंद के मथे पास की मुरम्मत ला 1 अरब रुपयन की स्कीम भी मंजूर, 2025 की बोर्ड में मोरिया लूप बंद बाबत आबपाशी खाते मॉडल स्टडी करण बदरा सिर्फ तजवीज की बुनियाद 1 अरब रुपये की स्कीम तैयार कई।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सकें।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं
2: बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
3: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح حفاظتی ٹیکے اور پولیو کے جو خطرات پلائے جائیں گے میری درخواست ہے تمام والدین حضرات سے کہ ان لمحات سے فائدہ اٹھائیں
4: اماں ہیڈو سے مکہ چھا ملیو
5: پٹرہ

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जा पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।
5: सामीन व नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए दो कतरे आप ज़रूर पिलाएं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: ईरान वेड़ के रोकण जरूरी है कर दिया है तारीख तब्दील करण वारन कदम की मुखालफत करनी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग रूसी सदर प्यूटन विच में इतफाक से मुलाकात दौरान विच ओभर की सूरत अहम मोड़ से आए भी सूरत में कबूलत में गाल इस्तेकाम रूस जो किरदार विच में मुलाकात दौरान बिन्हीं मुल्क विच में स्ट्रेटेजिक सहकार की गडियल पधराई से सहयू भी क्यों व्यू। मोहसिन नकवी एक भेरो बीहर ओचितो तेहरान आईसी जे सरबराह जनरल अहमद वहीदी से अहम मुलाकातों जे डी अग भी तेहरान पहुंची इरान परदेही वजीर अब्बास बेन ईरानी इख्तियार से मुलाकात। ईरान के हाने वडो लोडो इंदो वक्त भी घट अस कुछ डीहन में हमलो करे सकू था थी सके तो डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त सूमर वारे दिहाड़े ते जंग शुरू करण में सिर्फ कलाक सऊदी कतर वास्ते हमलो मुलतवी कयो। जंग में वापसी की सूरत में अमेरिका के घना सरप्राइज मिलंदा जंग में जो है उन मदद से हैरत अंगेज रद्द अमल डींदी ईरानी परदेही वजीर अब्बास राखची।

0: रखो ना तोखे, मुझे रो पाए तैयार थियण जो।
1: तू आज भी हसी,
0: थोड़ो पाए तो देखार।
2: ना माँ, माँ थकी पई आया।
0: न पुट, ये थक ना है, रत जी कमी आए। दिसता केडो ना फिको थी हुआ है तुझो चेहरो।
2: छा कया माँ?
0: 6 महीना थी वैन पुट, तू उम्मीद से आई। ऐ हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी। कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट, तोखे खबर है असा तो मेवन जो खलू खाई विंदा हुआ से। उनन सा ही तो खून ठांदो है, इन सा न तोखे कुछ थींदो और न ही बार रखे। पुट हाने तू मां थण वाली आही, पहजो ख्याल रखन बेन खां पर वधिक जरूरी है।
1: मेरी बातें तेरे जिम्मे, अब ये तुझको
3: जडे माँ पांजो ख्याल रखन दिया है तो सेहत नस्लन ताई हलन दिया है। ही पेगशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
4: मेरा नाम डॉक्टर आफ्ता, में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची में अपने फराइन सर अंजाम दे रहा हूँ। पोलियो के खात्मे के बिल्कुल हम करीब पहुंच चुके हैं, मगर वायरस अभी भी हमारे पानी और अखराज के सैंपल्स में पॉजिटिव है। हमारे बच्चे अभी भी इस बीमारी को पकड़ने के रिस्क पे हैं। इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू होने वाली है, जिसमें आप अपने 5 साल से कम वाले बच्चों को 2 कतरे पोलियो के जरूर पिलाएं, ताकि इस बीमारी पे जल्द से जल्द काबू पाया जाए।
5: मेरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
6: गार्डन, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सी क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई।
5: हाँ ये चो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
6: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
7: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर अली मेमन, एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनत और तजुर्बेकार सर्जा, बेहतरीन शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स, बायोलॉजी, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट, इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतीज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले। अपनी आँखों के नूर बच्चे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का मजीद रابطے के अल्तामन मजर स्कूल सिस्टम 03002723 4। निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल 03013853।
8: मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इर्शाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर।

0: मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटो से पेंजिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जै में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर लाए 03201800
1: माशाल्लाह फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असो जारियो जगह जा पावा अई पाइप दे 2 4 6 9 12 इंच में प्लेन अई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी वायरल

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03195567724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: आहे, नज़र जी कमज़ोरी, कन में वाधे जर आहे, गुर्दन जो इन्फेक्शन आहे, नारो चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं या कद न वधण वग़ैरह जो डॉक्टर साहब कामयाब इलाज शामिल थी सघे थो। मुखातिब थींदासीं डॉक्टर साहब जूं महिरबानी जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु स्टूडियो में अचनि। साहब सभ खां पहिरियां त असीं अव्हांखे ख़ुश आमदी चवंदासीं, ठीकु आहियो, तबियत ठीकु आहे अव्हांजी?
1: अलाह ताला जा एहसान।
0: अॼु कहिड़े मौज़ू बाबति ॼाण ॾींदा साईं?
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहिरियों त सभु तारीफ़ूं रब पाक जूं, जेको असांखे जारे थो, खाराए थो, रोज़ी ॾिए थो, ख़ुशी ॾिए थो, सभिनी ज़मीनी आसमानी आफ़तुनि खां महफ़ूज़ रखे थो। असां प्रोग्राम्स जी अची ॻाल्हि कोशिशि कंदा आहियूं त जेके बि असांजा ॿुधंदड़ आहिनि, लिसनर्स आहिनि, या जेके फेसबुक ते असांखे ॾिसंदड़ आहिनि, उन्हनि जे लाइ हिकनेस तौर ते जेके बीमारियूं हूंदियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ बीमारियूं आहिनि, उन्हनि जी अवेयरनेस जे लाइ ई प्रोग्राम हूंदो आहे। पोइ कोशिशि कंदा आहियूं त हर हिकु उहा ॻाल्हि जेकी न हूंदी आहे ख़बर, ऐं पोइ जेकॾहिं हिन प्रोग्राम जे तवसुर सां उनखे इहो ख़बर पए त हीअ असांखे सबब जे करे थिए थी, त पोइ हू उन हिसाब सां पाण बि फर्स्ट एड ॾेई सघंदा आहिनि ऐं जल्द अज़ जल्द उन डॉक्टर वटि पहुचंदा आहिनि। ऐं ॻाल्हि कयूं त बीमारियुनि जीअं खोड़ सारियूं बीमारियूं आहिनि, वाहे वात बि आहिनि, ऐं उहे छो थींदियूं आहिनि या जेकॾहिं थी वञनि थियूं त उन्हनि करणु घुरिजे फर्स्ट एड कहिड़ी करणु त पवनि था उनजा खोड़। हिकिड़ो ॾिसो खे असां आटो ॾिजे, हिकिड़ो इम्यूनिटी सिस्टम हूंदो आहे, जॾहिं उहे सेल्स आहिनि यानी हू पहिरियां बैक्टेरिया ईंदा आहिनि उन्हनि सां त जीअं ॿाहिरियुनि बैक्टेरियाज़ खे अंदरि अचणु न ॾियनि, पोइ अहिड़े तरीक़े सां

0: असांजो तमामु बहितरीन दोस्त बि आहे फ़क़ीर एजाज़ अली ख़ासकली साहिबु, तमामु घणियूं असांजे दिलि मोकिलियूं आहिनि, हार्ट्स मोकिलियूं आहिनि, इहे असांजे
1: प्यार आहे, प्यार
0: आहे, मोहबत आहे, ऐं मोहबतूं आहिनि, यानी हिकिड़ी मोहबत न हज़ार मोहबतूं,
1: उहो
0: साईं तालबल मौला वांगुरु त मूं वटि मोहबत जा आहिनि मणे, सो एजाज़ साहिब जी बि दिलि में असांजे लाइ माना मोहबत जा मणे आहिनि, सो ईअं ई असीं उहो चई सघूं था।
1: ॻोठ
0: वलीदाद खान लुंड खां मोहम्मद सिद्दीक लुंड बि फेसबुक ज़रिए असां गॾु आहे। एजाज़ साहिब असांखे सलाम चए पियो, वालेकुम असलाम मुंहिंजा भाउ, शाल आबाद हुजो, ख़ुशि हुजो, असांजो बि दुआऊं असां गॾु आहिनि। दोस्तो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि सिंध जा मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर प्रोफेसर मंज़ूर हुसैन मेमण साहिबु, जेके हिकु मुल्की सतह जा डॉक्टर आहिनि। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि, जो पंहिंजो क़ीमती वक़्तु कढी करे असांजे स्टूडियो में अचनि था, ऐं असांजे अवाम खे जेके असांजा ॿुधंदड़ आहिनि उन्हनि खे यानी नॉलेज ॾियण जे लाइ, ॼाण पहुचाइण जे लाइ सिहत वधीक हसास प्रोग्राम जो लाज़मी जे ॿुधण सां काफ़ी अहिड़ा दोस्त आहिनि काफ़ी डॉक्टर साहिब जे अतियाब थी वेंदा आहिनि, डॉक्टरनि था या उन्हनि खे मौक़ो मिलंदो आहे कृष्ण जो या सिहत बाबति मालूमात जो स्टूडियो में मौजूदु आहे। डॉक्टर साहिब जो ख़ासि में बज़रिया लाइव कॉल बि शामिल थी सघो था, 0301 2196 851, 0301 2196 851। त डॉक्टर साहिब खे असीं भलेकार बि चवंदासीं। डॉक्टर साहिब कॉल जी तरह वेंदासीं त ॾिसूं किथां जो कॉलर असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम साईं।
0: साईं मुंहिंजा केरु सां पियो ॻाल्हाए? ख़ुश आमदी चऊं था सोलंगी साहिबु, ठीकु आहियो, तबियत ठीकु आहे? जी मुंहिंजा साईं। को मसलो ई न आहे, पोइ अव्हांजे लाइ इहो वेझो आहे, मां बधेरो जतोई या मेहरापुर एॾो परे आहे ई कोन, 15-20 किलोमीटर जे डिस्टेंस ते आहे। तव्हां आसानी सां हलिया अचो, सुभाणे ई डॉक्टर साहिब खे ॾेखारियोसि, इलाजु करायोसि, अलाह साईं ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे, को मसलो ई न आहे, इनशाला सिहतयाब थी वेंदो। ठीक है मुझे साईं, वधीक बुधो एफएम बुधो, डॉक्टर साहब वहां के बुधाइंदो। जी सर।
1: जी सर, बिल्कुल मादे जे हवाले सा दोस्त के प्रॉब्लम आई हिन वक्त जेकी पोजीशन है, हर बियो शख्स मादे जी बीमारी में मुब्तला है, उन जो खोड़ सारी वजूहात है। एक तो जेको आ सो असा जो पानी जेको आ सो खराब थी चुको है, उने खां पो जेको आ सो जेके बाहर गरम अशिया जेको आ सो या जेके हार्ड शयूं असा इस्तेमाल कयूं था, बर्गर वगैरह या बारबेक्यूज वगैरह अड़ी शयूं, गरम शयूं, चांहि जो इस्तेमालु घणो, स्मोकिंग, स्ट्रेस, निंड जो सही न हुजणु, इहे खोड़ सारियूं वजूहात आहिनि मादे जे बीमारियुनि जो सबबु बणिजी वियूं आहिनि। इन जे करे पहिरियों त इन्हनि शयुनि ते कंट्रोल करणु घुरिजे, उन खां पोइ पाणी जो इस्तेमालु अवां ज़्यादा कयो, ऐं उन खां पोइ विटामिन सी जो इस्तेमालु ज़्यादा कयो, खीर जो इस्तेमालु ज़्यादा कयो, फ्रूट्स इस्तेमालु कयो, ॾही इस्तेमालु कयो, सौंफ़ हर खाधे खां बाद में जेको आहे सो तव्हां जेको आहे सो चुटकी इस्तेमालु कंदा कयो, उन सां छो जो हीअ हिकिड़ी कुदरती शयूं आहिनि, ऐं पहिरें तव्हां ॾिसो त को बि इलाजु मौजूदु न हूंदो, इहे ई शयूं हूंदियूं, ऐं असांजा वॾा बि असांखे इहे शयूं ॿुधाईंदा हुआ, ऐं इहे शयूं इस्तेमालु करण सां ई अव्हांखे रिलीफ़ मिली सघंदो। ॿिए नंबर ते मादे जी बीमारी जे लाइ होम्योपैथिक दवा इस्तेमालु कंदा कयो, उहा अव्हांखे आदि न कंदी आहे, छोटकारो ॾींदी आहे।
0: हिकु ॿियो कॉलर लाइन ते मौजूदु आहे, कॉल जे तरफ़ ईंदासीं। अस्सलाम वालेकुम। साईं मुंहिंजा केरु साहिबु पियो ॻाल्हाए? ॾाते दस्ती खां ख़ुश आमदी चऊं था। ॾातो दस्ती माना तालको ठरी मीरो लॻे थो? जी जी बिल्कुलु, अलाह ताईं ख़ुशि रखंदो। छा पुछंदा मुंहिंजा साईं डॉक्टर साहिब खां? अच्छा, चरियो वारा उन में ॾढ निकितो आहे, जीअं रंग हूंदी आहे मुंडी वांगुरु गोली
2: आहे।
0: सुभाणे तव्हां डॉक्टर साहिब खे ॾेखारे वञो, इन जो इलाजु मौजूदु आहे, थोरो लाॻीतो इलाजु कराईंदोसि, मां सुञा थो कुझु ई ॾींहंनि में ख़तमु थी वेंदो, ख़ासि एॾो मसलो न आहे या कीअं, जो अहिड़े क़िस्म जा डॉक्टर साहिबु ॿुधाईंदो तव्हांखे पाण ई। डॉक्टर साहिबु अक्सर करे प्रोग्रामनि में ज़िक्र कंदो आहे त 2022 खां बाद में ख़ासि तौर ते स्किन जा जेके चमड़ी जूं बीमारियूं, ॾढ थियो, ख़ारिश थी, इन में इज़ाफ़ो थियो, ऐं अलहमदिल्ला डॉक्टर साहिबु वटि जेको बि आयो आहे अलहमदिल्ला उहो सिहतयाब थियो आहे, इन में छुटकारो पातो अथई। ॿुधो एफ एम ॿुधो, वधीक डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाईंदो। ठीकु आहे मुंहिंजा साईं। जी डॉक्टर साहिबु।
1: जी साईं बिल्कुलु, तव्हां दुरुस्त चयो त 2022 खां पोइ त जेको आहे सो स्किन जूं जेके बीमारियूं आहिनि उहे तमामु घणियूं वधी वियूं आहिनि, ऐं हिन वक़्तु जेको आहे सो खोड़ सारा फंगल इन्फेक्शन्स जीअं अधे हींअर वार चिरे जी ॻाल्हि कई, जंहिंखे असां एलोपेशिया डिज़ीज़ चवंदा आहियूं, या उनखे फंगल बि चई सघिजे थो, त उनजी ट्रीटमेंट बि कामयाबु ट्रीटमेंट

0: यानी पैरालाइज्ड हिकड़ी जेको बांह थी वञे यानी उन में खोड़ सारी वजूहात हूंदियूं आहिनि, ब्लड सर्कुलेशन ख़तमु थी वेंदी आहिनि, रगूं डैमेज थी वेंदियूं आहिनि, त जॾहिं हिकिड़ी शिफ़ा अलाह ताला जे हथ में आहे, पर अहिड़े क़िस्म जा जॾहिं केसिस असां वटि आया आहिनि ईंदा आहिनि त हुननि खे जॾहिं दवाऊं ॾींदा आहियूं त अलाह ताला जी महिरबानी सां हू बिल्कुलु ठीकु थी वेंदा आहिनि। हाणे बि अंडर ऑब्ज़रवेशन असां वटि ॿ चारि अहिड़ा पेशंट आहिनि, पर अलाह ताला जी महिरबानी सां रिसेंटली अॼु बि हिकिड़ो पेशंट आयो जंहिंजो लेडीज़ पेशंट हो, जंहिंजो बिल्कुलु इहो हिकु बांह जेको आहे हुन जी सुन हुई, लेकिन हाणे हुन जी बांह उहा हल्की थी आहे ऐं हुन में इम्प्रूवमेंट अचणु शुरू थी वई आहे। इहो अलाह ताला जा लख अहसान आहिनि। सो अधे खे ॾिसी ॾींदासीं, ज़रूरु जेको आहे ज़रूरु भरू ॾेखारियो।
1: हीउ वक़्तु आहे कमर्शियल ब्रेक जो, त हलूं था कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़। गदगद जो ॿुधंदा रहो जीअं महरापुर FM 94।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनिया जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिला आसिम हुसैन आराई 03073592120।
3: ॾिसां थी तोखे परेशान घुमंदी रही आ, पहिरियों भेरो माउ थी रही आहीं न, मुंहिंजो बि इहो ई हाल हो।
4: ख़बर न आहे तव्हां ही सभु कुझु कीअं कयो नानी, मां त एतिरो थकी थी पवां, छा कयो हो।

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्तु अचे त ॿ साल तूं सोचजांइ, बसि इहा ॻाल्हि कमु ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। अमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: मेरा नाम डॉक्टर पीडियाट्रिशियन हूं, बच्चे नहीं।

0: में मौजूद आहे, आसानी सां तव्हां डॉक्टर साहिब वटि वञी सघो था, ॾेखारे अचोसि, डॉक्टर साहिब खां इलाज करायोसि। इनशाला अॼु तव्हां कॉल कई आहे, वरी जॾहिं 15 ॾींहं 8 ॾींहं कॉल कंदव त उनजो रिज़ल्ट तव्हां पाण ॿुधाईंदव त एतिरो नंढड़े खे फ़र्क़ु पइजी वियो
1: आहे।
0: अॼु तव्हां ॾींहुं नोट करे छॾियो, सुभाणे डॉक्टर साहिब खां दवा वठो, वरी 8 ॾींहं कॉल करे मूंखे प्रोग्राम में तव्हां पाण ॿुधाईंदो हिन ई नंबर ते। साईं डॉक्टर साहिब, असां नंढड़े जी दवा वरितीसीं डॉक्टर मंज़ूर साहिब खां, असांखे एतिरो रिज़ल्ट मिलियो आहे, एतिरी उमेद आहे अलाह ताला में। वधीक एफ एम ॿुधो, डॉक्टर साहिब तव्हांखे ॿुधाए थो, रूबरू सुभाणे ई वञी ॾेखारियोसि। बिल्कुल महिरबानी जी डॉक्टर साहब,
2: बिल्कुल असां ॾिसो हर हिकु जीअं सॼो शुरूआत के प्रोग्राम में चयोसीं त हर ॿियो शख़्स मादे जी बीमारियुनि में मुबतला आहे ऐं इन बारे में तव्हांखे ॿुधायोसीं, दवा त मां स्मेलिंग अचे थी, पेट जा जेकी बि तकलीफ़ आहिनि, इन जो इलाज सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ होम्योपैथिक में बहितरु आहे। होम्योपैथिक ॾिसो जेकी बि ॿी इलाज आहे उहो सिर्फ़ु आर्ज़ी हूंदो आहे, तव्हांखे एसिडिटी थींदी, तव्हां कैप्सूल खाईंदो, वक़्ती तौर ते तव्हांजी एसिडिटी ख़तमु थींदी, लेकिन उन जा साइड इफ़ेक्ट ॿिया खोड़ सारा आहिनि, जिगर ते आहिनि, अव्हांजी जेको सो सेक्स ते आहिनि ऐं अव्हां जी नज़र ते आहिनि, अव्हांजे दिमाग़ ते आहिनि, अव्हांजे जिगर ते आहिनि, इन जे करे अव्हां इन्हनि सभिनी शयुनि खां जेकॾहिं बचणु चाहियो था त सिर्फ़ु होम्योपैथिक तव्हां रुजू थियो, होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमालु कयो, उनजो को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे को, ऐं जंहिं शइ जो साइड इफ़ेक्ट न हुजे ऐं ॿिए इलाज खां सस्ती हुजे ऐं बहितरु हुजे त मुंहिंजे ख़्याल में त उहो जेको आहे सो रस्तो बहितरु हूंदो आहे। इन जे करे होम्योपैथिक हिन वक़्तु सॼी दुनिया में जेको आहे सो मशहूरु आहे ऐं हिन वक़्तु उन होम्योपैथिक हिकिड़ा जेको आहे सो यानी मां हर उहो फ़र्द जेको ॼाण रखे थो त उहो होम्योपैथिक ई इस्तेमालु करे थो।
0: प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि चई मेहराबर एफ एम 94 जो ही आवाज़ अव्हांजे समाजनि ते पहुचे पियो, अव्हांजो पंहिंजो मेज़बान हाकिम अली जिस्काणी अव्हां सां गॾु असांजे स्टूडियो में मौजूदु सिंध जो मशहूरु मारूफ़ डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु, ऐं सिंध जो चवंदो आहियां पर जंहिं वटि बलोचिस्तान जा पेशंट अचनि था त असीं ईअं चवंदासीं त बलोचिस्तान जो बि मशहूरु डॉक्टर आहे, इवन ॾिसो देरा बुगटी खां वठी करे डॉक्टर साहिबु वटि अचनि था, झलमंगसी बलोचिस्तान खां ईंदा आहिनि, कंबर शेदत खां देरा मुराद जमाल जा डॉक्टर साहिब वटि पेशेंट अचनि था, खुशदार बलोचिस्तान खां डॉक्टर साहिब वटि पेशेंट अचनि था, त इन मां हिकिड़ो कॉमन आहे त डॉक्टर साहिब न सिर्फ़ हिते सिंध में पर इहो बलोचिस्तान में बि डॉक्टर साहिब एतिरो मशहूरु आहे। डॉक्टर साहिब ईअं ई आहे यकीन?
2: अलाह ताला जी करम नवाज़ी आहे।
0: तमामु बहितरीन दोस्तो, अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु हर अरबा, ख़मीस, जुमो, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह जो 10 खां 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पुटरा पेट्रोल पंप कोठड़ी कबीर रोड मेहरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। डॉक्टर साहिब जूं ख़ासि महिरबानियूं आहिनि, मोहबतूं आहिनि जो पंहिंजो असांखे क़ीमती वक़्तु ॾींदा आहिनि, का बि बीमारी लाइलाज माण्हू लाइलाज थी करे बि जेके कराची मां बि मोटी था अचनि उन्हनि जो बि डॉक्टर साहिब वटि इलाज मौजूदु आहे। यकीनन अल्लाह ताला जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे, अल्लाह ताला माहे थियणो मायूसी कुफर हूंदी आहे, अल्लाह सिंह जी ज़ात शिफ़ा ॾियण वारी आहे। अवां हिकु दफ़ो डॉक्टर साहिब खे ज़रूरु ॾेखारियो, जॾहिं अवां डॉक्टर साहिब खे हिकु दफ़ो ॾेखारींदा त यकीनन अव्हांजी पंहिंजी बि हिकिड़ी दिलि मुतमैन थींदी ऐं अव्हां डॉक्टर साहिब मां बि मुतमैन थींदा, उन जी ट्रीटमेंट मां मुतमैन थींदा ऐं अलाह साईं जी ज़ात शिफ़ा ॾींदी। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, पिते जी पथरी आसानी सां डॉक्टर साहिबु वटि निकिरी वञे थी, अक्सर करे माण्हू ऑपरेशन करे वञी पितो कढाए ईंदा आहिनि, अव्हांखे पिते जो ऑपरेशन कराइण जी ज़रूरत नाहे। 30 साल तजुर्बो रखंदड़ प्रोफेसर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन साहिबु जेको इलाज करे थो, वॾे खां वॾी पथरी जा जॾहिं मूं वटि हिकिड़े माण्हू जा व्यूज़ आया आहिनि, 23 mm जी तमामु वॾी पथरी हुई, उहा बि पिते में, उहो पाण अल्ट्रासाउंड खणी आयो त साईं मुंहिंजी अल्ट्रासाउंड आहिनि ही, 5 महीननि में मुंहिंजी 23 mm जी पथरी निकिरी वई आहे पिते मां, तकलीफ़ बि कान आहे, अल्ट्रासाउंड बि निल आहे, अलहमदिल्ला ऐं ॾाढो मुतमैन आहियां, ख़ुशि आहियां ऐं यकीननि डॉक्टर साहिब खां जॾहिं इलाजु करायई त उहो माण्हू हिन महिल ते उनखे वरी पिते जी पथरी न थी आहे, त जेकॾहिं पितो माण्हू कढाए अचनि था त उन्हनि खे वरी मादे जी तकलीफ़ रहे थी, जो पिते वारो जेको वज़न आहे उहो मादे ते हलियो वञे थो, यकीननि मादे जी तकलीफ़ सीने में जलन थिए थी, के माण्हू त ईअं सम्झंदा आहिनि त असांखे दिलि जो सूरु आहे, डॉक्टर साहब ईअं बि थींदो आहे?
3: बिल्कुलु साईं।
0: त उन उहो कीअं ख़बर पए माण्हुनि खे, इहा थोरी असां चाहींदासीं त असांजे मौज़ूदु ॿुधंदड़नि खे तव्हां ॼाणिजो।
2: जैसे बिल्कुलु पिते जी पथरी जे हवाले सां, पितो ॾिसो, हिकिड़ी मां पहिरीं ॻाल्हि कढायां त जेकी किडनी स्टोन थींदो आहे त

ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़ रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3385-569, 0300-3385-69।

0: इते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003
1: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो GFM 94

0: आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर।
1: हमें किसी भी तरह से प्रेशर नहीं और ना ही इसमें प्रेशर देना चाहिए। जीआरटी में कोई और उसके हेड है तो मेरे ख्याल अभी तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। तो रिपोर्ट आएगी तो आपको उसकी फैक्ट्स पता चले। वो भी जो वीडियो बनी वो पूरी नहीं है, एक मोमेंट की है जिसमें उसको पुलिस वाला गाइड करके लेके जा रहा है और जो उसके साथ बाकी प्रोटेक्शन है वो पीछे है। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें कई ऐसी बेजाबतियां थी जिनके ऊपर हमने इंक्वायरी की और जो उसके जिम्मेदार थे उनको सजा। पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस इसमें बिल्कुल मिलकर काम कर रही है।
2: मनुष्या डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी है टंडे मस्त में कार है तोहमत हणी कतल कल खालदा चांडियो के कतल वारन मामलन ते पुलिस अमलदारन जी सेनेट कमेटी आडो पेशी। एडिशनल आईजी कराची आजाद खान घरू मामलन जी स्टैंडिंग कमेटी के ब्रीफिंग डींदे पिंकी जे नेटवर्क में सिंध ए पंजाब पुलिस जहा एहलकार भी मुलविस आन उन्होंने खिलाफ कार्रवाई थी। पिंकी कें भी सियासतदान जो नालो ना वरतो उन बनी गाल जो नालो रुगो सियासी कवरअप लाए वरतो। डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब कमेटी के बुधायो त नारी खालदा चांडियो पसंद पड़ने लाए घरां निकरी वही हुई केस वापस कराए जिरगे में कतल की फतवा जारी कई वही। कतल केस में 10 जवाबदार गिरफ्तार किया है को भी सजा का बची न सकंदो। कमेटी चेयरमैन समीना जहरी चौ गैरत के नाले से औरत के कतल करने की इजाजत नहीं दे सकते।

अर्शिया डीलर अनमोल उर्फ़ की खेप प्रोटोकॉल ॾियण वारे मामले जी जांच मुकम्मल। SSP सिटी अली हसन, SHO गार्डन ऐं SIO ज़िमेवार करार। रिपोर्ट में ॼाणायो वियो आहे त SHO गार्डन हनीफ़ पुलिस प्रोटोकॉल ॾिनो। पिनकी के थाने में खाधो, मेकअप, कपड़ा ऐं दवाऊं फराहम कयूं। पिनकी खां अदालती पेशी ताईं SSP इन्वेस्टिगेशन सिटी ऐं DIG ॾखण खे अणॼाण रखियो वियो। पिनकी थाने ते मौजूदगी दौरान नशे जी हालत में हुई पिनकी खे SHO पंहिंजी ऑफिस में ख़ासि महिमान जीअं विहारियो। ॿिन्ही में पैसनि जी ॾेती लेती बाबति बि ॻाल्हियूं थियूं। हुन मामले जी वधीक जांच थियणु घुर्जे।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए सोम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़ सके।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई।
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद।

पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ए औरतन में वजन जो न वधण उन्हन सबनी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लए 0301 91 896

अगर आप हैं ड्राइव कार बाइक या रिक्शा ड्राइवर तो 4 मई से 12 जुलाई तक वीकली चैलेंजेस में हिस्सा लें, प्लैटिनियम स्टेटस मेंटेन करें और 5 फेयर अर्निंग्स के साथ 2500 से ज्यादा इनाम।

0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद जियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन महाब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो, इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालदैन हज़रात से कि इन लम्हात से फ़ायदा उठा।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अमेरिका ईरान जी वेड़ के रोकण जरूरी आहे। एक तरफी गुंडागर्दी ए तारीख के तब्दील करण वारन कदमन जी मुखालफत करनी पवंदी। चीनी सदर शी जिनपिंग ए रूसी सदर प्यूटन विच में मुलाकात दौरान इतफाक। बीजिंग में रूसी सदर सा मुलाकात दौरान चीनी सदर गालाइंदे चयो त विच ओभर जी सूरतहाल अहम मोड़ ते आहे। चिकताण जी बीहर शुरुआत कंहिं भी सूरत में कबूल नाहे। मौजूदा हालतन में गालियूं वडी अहमियत रखन थियूं। प्यूटन चयो त आलमी सतह ते इस्तेहकाम बरकरार रखण लाइ चीन ए रूस जो किरदार अहम आहे। चीनी ए रूसी सदरन विच में मुलाकात दौरान बिन्हीं मुल्कन विच में स्ट्रेटेजिक सहकार जे गडियल पधराई ते सहियूं भी कयूं वयूं।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप डील न करण जी सूरत में ईरान मथा हमलन जी बीहर धमकी दई छी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान वट वक्त घट आहे, कुछ डीहन में हमलो करे सघूं था। थी सघे तो जुमे या छंछर ते ईरान मथा हमलो करे छड्यूं। ईरान अवाम जी हालत तमाम घणी खराब आहे, उहे फौरी डील चाहिनि था। अपना हुरमुस के कंहिं भी वक्त खोले सघूं था, पर इन हवाले का तकड़ न आहे। चीनी सदर मुंहिंजो सुठो दोस्त आहे, चीन जो दौरो बि तमामु घणो कामयाब रहियो।

दुश्मन जी चालाकियन मां जाहिर थे तो उहे जंग जे नए दौर जी गोला में आहिनि। वधंदड़ माशी दबाव ऐं घेराव ईरान खे हथियार पिटा करण ते मजबूर नथो करे सघे। सदर ट्रंप जी धमकियुनि ते ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालीबाफ जो अर्द अमल। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त जंग में वापसी जी सूरत में अमरीका खे घणा सरप्राइज मिलंदा। जंग में जेको सिखियो आहे हुन जी मदद सां वधीक हैरत अंगेज़ रद्द अमल ॾींदासीं। ईरानी परडेही वज़ीर अब्बास इराक़ची जो रद्द अमल। ईरानी नायब परडेही वज़ीर क़ासिम ग़रीब आबादी जो चवणु आहे त अमरीका धमकी खे अमन जो मौको बणाए पेश करे रहियो आहे। असां कंहिं बि जारीअ जो मुक़ाबलो करण लाइ तयार आहियूं। ईरान जे दौरे ते तहरान पहुतल वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जूं ईरानी क़यादत सां मुलाक़ातूं। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जे ईरानी सदर मसूद पेज़िश्कियान, पासदारन इनकलाब जे कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी ऐं ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी सां धारदार मुलाक़ात कई। मोहसिन नक़वी जो हफ़्ते अंदर तहरान जो बियो दौरो आहे।

वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सां चीन जी आला सतही वफद जी मुलाकात। चीनी वफद जी नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी जे नायब चेयरमैन जी अगवाणी में वज़ीर-ए-आज़म सां मुलाकात कई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ऐं चीन विच में तारीखी ऐं स्ट्रेटेजिक सहकार ते ॿधल भाईवारी खे साराहींदे चयो त पाकिस्तान ऐं विच चीन विच में स्ट्रेटेजिक हम आहंगी जी बुनियाद ते दोस्ती जो बेमिसाल रिश्तो कायम आहे। वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर खे पाक चीन लाॻापनि जी 75 सालगिरह जूं वाधायूं ॾिनियूं।

ईरान ऐं अमरीका विच में तकरार जा खिते ते नाकारी असर पइजी रहिया आहिनि। मईशत ऐं तवानाई वारा मामला दबाव जो शिकार आहिनि। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी लाहौर में मखदूम अहमद जी रिहाइशगाह ते ॻाल्हि ॿोल। बिलावल भुट्टो चयो त अमरीका ईरान ॻाल्हियुनि में पाकिस्तान जो किरदार वाखाण जोॻो आहे। तकरार जल्द ख़तम थियणु घुर्जे।

0: मनशियार डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के प्रोटोकॉल देने वारे मामले की जांच मुकम्मल। एसएसपी सिटी अली हसन, एसएचओ गार्डन ए एसआईओ जिम्मेवार करार। रिपोर्ट में जाना व्यू है था।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एटमाद, बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307359210।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाणी अवां जे पांजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है, दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के दो कतरे हर बच्चा हर बार।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर सोम।

वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301 91 896

0: ऐं नहनि एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0333-85-569
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में
3: मशवरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार

0: तव्हांजी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: मेरा नाम डॉक्टर सादुल्ला चाचड़ है, मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ NICH कराची में। पोलियो के खिलाफ मुहिम शुरू हो रही है। दो कतरे हर बच्चे को जो के 5 साल से कम उम्र है लाना जरूरी है और इससे कोई खतरा नहीं है। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर वक्त।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मुस्बत जो ऐलान थी सके तो ईरान जे दौरे ते तेहरान पहुतल वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जो ईरानी क्यादत सा अहम मुलाकातूं। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जी ईरानी सदर मसूद पेशकियान पासदार इंकलाब के सरबराह जनरल अहमद वहीदी ए ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी सा धारदार मुलाकात कई। मोहसिन नकवी कुछ डी पहरिया भी ईरान वो हो। ईरान ए अमेरिका की वेड़ के रोक
2: नहीं यार, ये ज्यादा दूर है, इस पे पैसे
1: में रूसी सदर से मुलाकात दौरान चीनी सदर गलाइंदे चो तो विच ओवर की सूरत अहम मोड़ ते है। चिकताड़ की बीहर शुरुआत कें भी सूरत में कबूल ना है। मौजूदा हालत में गालियों वड़ी अहमियत रखन थी। प्यूटन आलमी सतह से इस्तेकाम बरकरार रखने लाए चीन ए रूस जो किरदार अहम है। चीनी ए रूसी सदर विच में मुलाकात दौरान बिन्ही मुल्क विच में स्ट्रेटेजिक सहकार की गड़ियल पधराई से सहयोग भी कई वही। अमरीकी सदर डोनल्ड ट्रंप डील न करण की सूरत में ईरान मथा हमलन की बीहर धमकी दई छी। डोनल्ड ट्रंप है ईरान वट वक्त घट है, कुछ डी में हमलों कर सकूं था। थी सके तो जुमे या छंछर से ईरान मथा हमलों कर छ्यूं। ईरान अवाम की हालत तमाम घनी खराब है, उसे फौरी डील चाहन था। अपने हरमुस के कें भी वक्त खोले सकूं था, पर उन हवाले का तकड़ ना है। चीनी सदर जो सुठो दोस्त है, चीन जो दौरों भी तमाम घणो कामयाब रो। दुश्मन की चालाकियन में जाहिर थे तो उहे जंग के नए दौर की गोला में आन। वधंदड़ माशी दबाव ए घेराव ईरान के हथियार पिटकर से मजबूर न तो कर सके। सदर ट्रंप की धमकियों से ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बकर कालिबाफ जो रदअमल। ईरानी परे वजीर अब्बास अराग़ची है तो जंग में वापसी की सूरत में अमरीका के घना सरप्राइज मिलंदा। जंग में जो सिखियो है उनकी मदद से हैरत अंगेज रदअमल दींदी। ईरानी परदेही वजीर अब्बास अराग़ची जो रदअमल। ईरानी नायब परदेही वजीर काज़िम फरीबाबादी जो चवण है तो अमरीका धमकी के अमन जो मौको बनाए पेश कर रो है, असा कें भी जारी जो मुकाबलो कर तैयार आयू।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद ज़ियाउद्दीन शाह वल्दे हजरत मौलाना सैयद हुसैन मआब शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। हर शख्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा माजूरी से बच जाए, इसी तरह दीगर तमाम ऐसे अमराज से कि जो इसके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह हिफाजती टीके और पोलियो के जो खतरात पिलाए जाएंगे। मेरी दरख्वास्त है तमाम वालिदैन हजरात से कि इन लम्हात से फायदा उठाए।
4: अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर मोहसिना नूर इब्राहिम है और मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में बच्चों के शोबाए सेहत से वाबस्ता हूँ। मैं वालदान से दरख्वास्त करूंगी कि अपने बच्चों को जो कि 5 साल तक की उम्र के हैं उनको पोलियो के कतरे पिलवाएं, चाहे आपने उनको पहले भी पोलियो के कतरे पिलवाए हुए हों। ये पोलियो के कतरे उनकी इम्यूनिटी या उनकी कुव्वत मुदाफियत को और बेहतर करेंगे ताकि वो पोलियो से लड़
5: सकें। नाज़रीन, मैं उमर सादिक आपसे मुखातब हूँ। अकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आप में से हर एक निगहबान है और निगहबानी के बारे में उनसे पूछा जाएगा। औलाद के निगहबान वालिदैन हैं। पोलियो के बीमारी से बचाने के लिए 2 कतरे आप जरूर पिलाइएगा।
6: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इनमें मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज़ जीए एफएम 94।